ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

बम बम भोले भोले बम बम बम बम भोले भोले बम बम बम बम कहो वैद्यनाथ भंडारी तेरी मई माहे नारी सखी नैया तूने तारी तुझे माने दुनिया सारी भोले बम बम बम बम भोले भोले बम बम बम बम

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे दी संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारें दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद, अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबके तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
5: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है, अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
6: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज, तू ही लाया इसे।

सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो दोस्त पिंकी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप हैं इस वक्त 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। अब से लेकर 11 बजे तक श्रोताओं रहेंगे आपके साथ, करेंगे बातचीत, ढेर सारी जानकारियाँ साझा करेंगे और साथ ही साथ सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे से गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं और वातावरण में नमी है 90%। जी हाँ श्रोताओं, बरसात के दिन है, बारिश का होना भी लाजमी है, लेकिन इस बारिश में अपने आप को संभाल कर बचा कर और जब ज़रूरी हो तभी यात्राएं करें, अनायास ही यूं ही घर से ना निकलें। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ। बने रहिए यूं ही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

शुद्ध 91.2 मेगाहर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब समय है आज का विचार आपके साथ साझा करने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। स्वीकार करने की हिम्मत और खुद में सुधार करने की नियत रखने वाला व्यक्ति जीवन में हर बड़ी मंजिल को पा सकता है। विचार एक बार फिर से दोहरा रहे हैं श्रोताओं, स्वीकार करने की हिम्मत और खुद में सुधार करने की नियत रखने वाला व्यक्ति जीवन में हर बड़ी मंजिल को पा सकता है। श्रोताओं अब आज के विचार को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। स्वीकार करने की हिम्मत यानी हम जिंदगी में अगर कभी कुछ करते हैं, मान लीजिए कोई गलती ही करते हैं, तो उसे कई बार हम नकार देते हैं, उसे स्वीकार करने की हिम्मत हम में नहीं होती है। और साथ ही साथ अगर हमसे कुछ गलत होता है या कुछ सही नहीं हो रहा, तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और निरंतर अपने में सुधार करने की नियत रखता है, वही व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी मंजिल को पा लेता है। वहीं दूसरी ओर जो इंसान गलती करने के बाद स्वीकार नहीं करता है कि मुझसे गलती हुई, टालमटोल करता है या यूं कह देते हैं हम अक्सर कि उसकी वजह से ये काम खराब हुआ या उसकी वजह से सही नहीं हो पाया, और वहीं अगर हमें सुधार की ज़रूरत है तो हम सुधार के लिए भी प्रयास नहीं करते, तो हम जिंदगी में उसी जगह खड़े रहते हैं, वहीं अटके रहते हैं जहाँ कई सालों से खड़े होते हैं। इसलिए स्वीकार करने की हिम्मत रखिए और खुद में सुधार करने की नीयत अपने अंदर पालिए, तभी आप जीवन में बड़ी से बड़ी मंजिल को पा सकते हैं। तो श्रोताओं ये था आज का विचार और आज का ज्ञान भी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब रुख करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा 9:30 पर भी। उससे पहले 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। यूं ही बने रहिए श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बदले की भावना से कार्रवाई करने के भाजपा के आरोपों को किया खारिज। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत कांगड़ा जिले में बीते वित्त वर्ष के दौरान 7 करोड़ से अधिक की राशि की गई खर्च। और प्रदेश में भारी वर्षा से 112 सड़क मार्ग अवरुद्ध। मौसम विभाग का आज 3 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे कभी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के वित्तीय बकाया, बिजली के हिस्से और शानन जल विद्युत परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान पर प्रयास निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से प्रदेश के लगभग 4,200 करोड़ रुपए के वित्तीय बकाया और 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के राज्य के अधिकार की मजबूती से पैरवी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन जल विद्युत परियोजना की लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद पंजाब सरकार ने इसे हिमाचल को अभी तक वापस नहीं किया है। राज्य सरकार इस मुद्दे को भी विभिन्न स्तरों पर प्रभावी ढंग से उठा रही है और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दीर्घकालिक हितों की रक्षा और संसाधनों पर हिमाचल के वैध अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के मशोबरा में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उनका वेस्ट कलेक्शन ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया है। शिमला में राज्य सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी खतरे में है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 21 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पार्टी इन सभी मुद्दों को सदन में उठाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो भाजपा का जन आंदोलन और अधिक व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जनता सरकार की जन विरोधी नीतियों का जवाब देगी।
1: इस तरह से जो पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के जनता गरीब जनता के ऊपर आपने पौने 4 साल के इस कार्यकाल में कुछ कृपया यहाँ की जनता को जो इनको सहने के लिए उसका जवाब तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की जनता आपको दे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने संदेश दे दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार को इनकार करने का।
0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा के बदले की भावना से कार्रवाई के आरोपों को खारिज किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून के मुताबिक भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई कर रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि यदि भाजपा को कोई कार्रवाई न्यायसंगत नहीं लगती है तो पार्टी को अदालत का रुख करना चाहिए।
2: यहाँ बदले की भावना की तो कोई बात ही नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ अगर कोई FIR हो रहा है, अगर उनको लगता है ये FIR जो गलत है, FIR को क्वेश्चन करने के लिए हाईकोर्ट में जो है प्रावधान है, तो वहाँ पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये बदले की भावना से हो रही है या वाकई ये भ्रष्टाचार में लिप्त। आप अगर अपने लोगों को भ्रष्टाचार से कानूनी कार्रवाई के तहत को रोकने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपना कर लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, उसमें आपको जो है सफलता नहीं मिलने वाला है।
0: राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल के हितों को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया। राज्य सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद कुल्लू जिला उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा व पुलिस अधीक्षक मदन लाल का तबादला कर दिया है। सरकार ने IPS अधिकारी अभिषेक S को कुल्लू का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है, जबकि ADM सुरजीत सिंह को उपायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत कांगड़ा जिले में बीते वित्त वर्ष के दौरान 7,33,00,000 रुपए की राशि खर्च की गई। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले के 746 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
3: कांगड़ा जिले में अनाथ, निराश्रित, परित्यक्त और उपेक्षित बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना प्रभावी साबित हो रही है। बीते वित्त वर्ष के दौरान जिले के 746 बच्चों के कल्याण के लिए 7.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे उन्हें शिक्षा, आवास, विवाह, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि इन बच्चों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन के लिए तैयार करना है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि बच्चों को सामाजिक सुरक्षा, गृह निर्माण, उच्च शिक्षा, विवाह सहायता, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। निश्चित तौर से ये पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि कांगड़ा के सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: चंबा जिला प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर संचालित विभिन्न दुकानों के दुकानदारों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग का आह्वान किया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने यात्रा मार्ग के निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को क्षेत्र के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र व मणिमहेश घाटी की प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के दृष्टिगत प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में छोटी क्षमता युक्त पानी की बोतलों और नमकीन आदि के छोटे पैकेट की बिक्री प्रतिबंधित है। हमीरपुर जिला में सुजानपुर नगर परिषद के 9 वार्डों में बरसात के दौरान भी लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। शहरवासियों की सुविधा के लिए जल शक्ति विभाग ने ऐतिहासिक प्राकृतिक जल स्रोत नौण से पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
4: नगर परिषद सुजानपुर में जल शक्ति विभाग ने ऐतिहासिक प्रकृति जल स्रोत नौण से पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी है। पहले शहर में ब्यास नदी से जल आपूर्ति होती थी, लेकिन बरसात में गाद बढ़ने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग ने ऐतिहासिक नौण से उठाऊ पेयजल योजना शुरू की है, जिससे शहर में नियमित जल आपूर्ति होने लगी है। बताया जाता है कि वर्षों पहले महाराजा संसारचंद के समय इस प्रगति जल स्रोत का निर्माण करवाया गया था। करीब 1.5 वर्ष पहले नगर परिषद सुजानपुर ने नौण के कायाकल्प पर लगभग 15,00,000 रुपए खर्च किए थे। अब जल शक्ति विभाग ने इस जल स्रोत का उपयोग पेयजल आपूर्ति के लिए शुरू कर दिया है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि राज्य के कई स्थानों पर बीती रात वर्षा का समाचार है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते 112 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 189 विद्युत ट्रांसफार्मर और 61 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 9 अगस्त तक प्रदेश के अन्य स्थानों पर मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहने की संभावना जताई है। शिमला जिला में आपदा से प्रभावित पेयजल योजनाओं के मुरम्मत व जीर्णोद्धार कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रति योजना 2,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जल जीवन मिशन के तहत आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हीं पेयजल योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया जाएगा जिनकी क्षति संबंधी रिपोर्ट राजस्व विभाग में दर्ज होगी। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, जॉब ट्रेनी डॉक्टरों के वेतन में 78% की बढ़ोतरी। दैनिक भास्कर की एक खबर है, विधानसभा सत्र तक उच्च शिक्षा विभाग में छुट्टियों पर रोक, छुट्टी के दिन भी ड्यूटी संभव। शिपकीला मार्ग से 6 साल बाद बहाल हुआ चीन के साथ व्यापार ठप, दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है। मौसम पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, मणिमहेश जा रहे श्रद्धालु की मौत, प्रदेश भर में 11 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बदले की भावना से कार्रवाई करने के भाजपा के आरोपों को किया खारिज। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत कांगड़ा जिले में बीते वित्त वर्ष के दौरान 7 करोड़ से अधिक की राशि की गई खर्च और प्रदेश में भारी वर्षा से 112 सड़क मार्ग अवरुद्ध। मौसम विभाग का आज 3 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज है 6 अगस्त का दिन और 6 अगस्त के दिन क्या कुछ खास रहता है ये भी आपको कार्यक्रम में हम ज़रूर बताएंगे। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन हम कह सकते हैं, हिरोशिमा दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये दिन 6 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम की याद और उससे हुए भारी विनाश का प्रतीक है। इस दिन के बारे में कार्यक्रम में आगे और भी बातचीत करेंगे श्रोताओं। फिलहाल इस लंबे से अंतराल के बाद लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज हिरोशिमा दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओ, 6 अगस्त को आज ये हिरोशिमा दिवस जो है ये मनाया जाता है। और आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर जो है ये परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 की सुबह ये बम गिराया गया था और अमेरिकी वायुसेना ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का ये परमाणु बम जो है वो गिराया था। इस हमले में एक ही झटके में हज़ारों लोग मारे गए और साल के अंत तक करीब 1,40,000 लोगों की जान चली गई थी। इसके बारे में श्रोताओं हम कार्यक्रम में आगे और भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मुझे कुछ याद आ रहा है, जब मैं इस हिरोशिमा दिवस के बारे में आपसे बात कर रही थी, जो हमारे समय के बच्चे हैं या यूँ कह सकते हैं कि उस दशक में जो पैदा हुए, अब ये तो नहीं बताया जा सकता कि मैं कौन से दशक में पैदा हुई, 4थी या 5वीं कक्षा में हमारी जो समाज शास्त्र की किताब थी उसमें हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में जो है वो बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस तरह से ये बम गिरे और ये जो बम गिरे इनके कारण कितने लोगों की जान गई और कितने लोग जो हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए और आगे उनकी जो आने वाली पीढ़ियां या यूँ कहें कि आगे जो उनके बच्चे पैदा हुए वो भी किसी न किसी शारीरिक विकार को लेकर के जो है वो कई सालों तक पैदा होते रहे। तो बाल मन में ये अजीब से सवाल आते थे कि क्या हुआ होगा, कि किस तरह से बम धमाके में वो लोग मारे गए होंगे और जो बचे होंगे वो किस तरह से, उनके किसी के शरीर का कोई अंग नहीं होगा, वो किस तरह से जो है अपना जीवन यापन करते होंगे। तो ये मेरे साथ या मेरे दौर में जो पैदा हुए बच्चे हैं या उस दौर में बड़े 4थी 5वीं कक्षा में रहे होंगे, उन्होंने ज़रूर इस पाठ, उस वक्त हम कहते थे, अब तो थोड़ा चेंज हो गया स्कूल कॉलेज का भी ट्रेंड, तो सामाजिक की हमारी किताब थी उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक ये पूरा हिरोशिमा और नागासाकी का जो एक पाठ है, एक चैप्टर है पूरा, वो हमें दिया गया था और वहाँ पे हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। इसके बारे में श्रोताओं कार्यक्रम में भी आके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन विस्तार से बताने से पहले कार्यक्रम में आपका मनोरंजन करना भी ज़रूरी है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको फिर से एक बार मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं श्रोताओं इतिहास की ओर, जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में। श्रोताओं, 6 अगस्त का दिन भारत और विश्व के इतिहास में कई बड़ी घटनाओं से जुड़ा है। सबसे बड़ी विश्व घटना 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जाना है, जबकि भारत में मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना और मंडल आयोग जैसे अहम फैसले इसी दिन हुए। छह अगस्त 1862 मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 6 अगस्त 1906 स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास और अन्य नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 6 अगस्त 1990 भारत सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की, जिससे ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ। 6 अगस्त 2019 संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान निष्प्रभावी हुए। 6 अगस्त 2019 ये था भारत का इतिहास। अब नजर दौड़ाते हैं विश्व के इतिहास की ओर। 6 अगस्त 1825 बोलीविया ने पेरू से अपनी स्वतंत्रता हासिल की। 6 अगस्त 1914 ऑस्ट्रेलिया ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया, जिसे हिरोशिमा दिवस के रूप में याद किया जाता है। 6 अगस्त 1962 जमैका लगभग 300 साल के ब्रिटिश शासन के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 6 अगस्त 2012 नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था। 6 अगस्त 2012 ये थी आज के दिन के बारे में इतिहास में दर्ज जानकारी, या यूं कहें कि इतिहास में आज के दिन जो कुछ घटा था वो आपके साथ हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा किया। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब कार्यक्रम में श्रोताओं चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक, बने रहिए यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में रुख करते हैं जानकारियों की और साझा करते हैं आपके साथ ये जानकारी। श्रोताओ, मानसून में आसमान से निहारे धौलाधार धर्मशाला स्काईवे ने दिया खास ऑफर। मानसून के सुहावने मौसम में धौलाधार की वादियों का सुंदर नजारा देखने की चाह रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक रोपवे ने विशेष छूट जो है वो जारी की है और ये छूट है ₹500 में आपका धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाना और वापसी भी। जी हाँ श्रोताओं, इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड या अपना पहचान पत्र जो है वो काउंटर पे जाकर के दिखाना होगा और ₹500 में आपका दोनों समय का मैक्लोडगंज से धर्मशाला और धर्मशाला से मैक्लोडगंज का आना जाना जो है वो हो जाएगा। इसके लिए कुछ नियम है कि इतने से इतने घंटे के भीतर आपको जो है वो जर्नी पूरी करनी होती है, वो आपको काउंटर पे जाकर के सब कुछ बता दिया जाएगा। और अगर आपने भी अब तक रोपवे का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आप भी जाइए और 30 सितंबर से पहले पहले इस अवसर का लाभ जो है वो उठाइए। श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में। बहुत ही प्यारा सा गीत है श्रोताओं, इंजॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

14.91 मेगा हर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में फिर से रुक कर रहे हैं जानकारियों की ओर। 15 अगस्त, जी हां श्रोताओं, जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में हर्षोल्लास एवं गरिमामय ढंग से आयोजित जो है वो किया जाएगा। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि समारोह का शुभारंभ शहीद स्मारक पर मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा माल्यार्पण के साथ होगा। इसके उपरांत पुलिस ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और एनएसएस के कैडेट्स द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति और प्रदेश की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। विनय कुमार ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह को अधिक भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से रेफरल ड्रॉ निकाला जाएगा तथा जरूरतमंद लोगों को सहायक उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और आयोजन स्थल पर स्वच्छता एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर सहायक आयुक्त विवेक चौहान ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। और श्रोताओं ये विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं हम रेडियो गुंजन के माध्यम से। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और आप श्रोताओं कार्यक्रम में सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। जी हाँ, आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का महत्व और उद्देश्य क्या है श्रोताओं, वो भी जानते हैं। शांति का संदेश। ये दिन दुनिया भर में शांति, अहिंसा और परमाणु हथियारों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। श्रद्धांजलि। इस दिन उन सभी लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने इस विभीषिका में अपनी जान गंवाई या दीर्घकालिक बीमारियों का सामना किया। श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसके बारे में, क्योंकि आज वही खास दिवस जो है वो दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। 3 दिनों बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति के संदर्भ में लिटिल बॉय और नागासाकी के बम को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैट मैन कहा गया। और श्रोताओं, इन परमाणु बमों के बाद जो हिरोशिमा और नागासाकी पर असर हुआ था उस असर को सारी दुनिया जानती ही है, और इसीलिए आज के दिन को अहिंसा के खिलाफ या यूं कहें कि जितने भी हमारे परमाणु हथियार हैं उन सब से दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए और आपस में अहिंसा और शांति का संदेश देने के लिए आज का जो ये खास दिन है ये मनाया जाता है। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब चलते हैं फिर से कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अब आपके साथ कुछ बातें जो कि काम की हैं। आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है वो बुखार चल रहे हैं। वैसे भी बरसात के दिनों में छोटी मोटी बीमारियां लगती हैं और सही समय पर अगर हम उनका निपटान नहीं करते तो वो जो बीमारियां हैं वो विकराल रूप ले लेती हैं और हमारी सेहत को उससे भारी भरकम नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। खैर, बात कर रही हूँ मैं वायरल बुखार की, और कांगड़ा में तो ये कम है लेकिन मैं बीते सप्ताह शिमला की ओर जाना हुआ हमारा, और हम पूरे परिवार के साथ शिमला गए। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि जाते जाते ही रास्ते में मुझे हल्की सी ठंड महसूस हुई और मुझे लगा शायद मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है तो कपकपी सी फील हो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे और ज़्यादा ठंड लगने लगी और बुखार जो है वो तेज़ हो गया। और सफ़र में ही अगर आप बीमार हो जाएं तो वो सफ़र कैसा रहता है आपको पता ही होगा। फिर रास्ते में रुक करके हमने खुद अपनी ही मर्जी से जो है वो पैरासीटामोल खरीदी और वो एक गोली मैंने खा ली। उसका काफ़ी देर तक असर हुआ, जब तक कि मेरा सफ़र 6-7 घंटे का पूरा हुआ तब तक असर रहा उसका। उसके बाद जैसे ही हम अपने क्वार्टर पहुंचे तो फिर से बुखार आ गया, सिर में दर्द शुरू हो गया, ना कुछ खाने का मन ना कुछ पीने का मन, और नींद भी नहीं आ रही थी। हालत ऐसी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो एक दो दिन तो हमने समझदारी करके जो पैरासीटामोल ली थी उसको खा करके बिता दिए, लेकिन वो बुखार इतना कह सकती हूँ मैं डरावना था कि ना तो वो ठीक हो रहा था, हर 2-3 घंटे के बाद 3-4 घंटे के बाद उसका जो है वो अप डाउन हो रहा था। फिर तीसरे दिन हम डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि शिमला में उन दिनों वायरल फैला हुआ था और ये वायरल बुखार जो है 6-8 दिन लेकर के ही जा रहा था। तो जो डॉक्टर साहिबा थी उन्होंने चेकअप किया अच्छे से और दवाइयाँ भी दी ठीक से, और उसके बाद घर आकर के क्वार्टर में आकर के पतिदेव ने मेरी खूब सेवा और खातिरदारी भी की। लेकिन जिस वक्त आप बीमार होते हैं उस वक्त कोई आपकी सेवा या खातिरदारी जितनी भी करे उस वक्त इरीटेशन होती है और लगता है कि किसी ना किसी तरह से हम ठीक हो जाएँ। खैर, समय लगा 6-7 दिन मुझे ठीक होने में और उसके बाद फिर से धर्मशाला की वापसी हुई। और ये बात श्रोताओं मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लंबे समय के बाद जब हम बीमार होते हैं, जब कुदरत आप में मेहरबान होती है, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक होता है, और जब कभी आप बहुत लंबे समय के बाद बीमार होते हैं और इस तरह के वायरल फीवर या कोई भी वायरल उस समय चल रहा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी देता है। तो ऐसे में ये जो है वायरल जो भी फैलता है उसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वायरल बुखार होने पर हमें ज़्यादा उछल कूद या ज़्यादा सुपर वुमेन बनने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम करना होता है, जैसे कि मैंने शिमला जा कर के सिर्फ और सिर्फ आराम ही किया। और ऐसे में पानी खूब पिए क्योंकि तरल पदार्थ पीने से जो है हमारा सिस्टम ठीक रहता है, शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। और डॉक्टर की सलाह से ही पैरासीटामोल ने हमने तो अपनी ही इच्छा से ले ली थी जिसका असर रहा था काफ़ी देर तक, और बाद में जब चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि पैरासीटामोल तो आपको खानी ही थी लेकिन डॉक्टर के परामर्श से अगर हम खाते तो और भी बेहतर था। साथ ही साथ ठंडे पानी की पट्टियाँ रखे और हल्का और आसानी से पचने वाला खाना जिसे कि हम मूंग दाल, धुले मूंग या दले मूंग की खिचड़ी जो है वो बना करके खा सकते हैं। और श्रोताओं, बातचीत मेरी बहुत लंबी हो गई है और इसी वायरल के बारे में मैं आपसे कार्यक्रम में आगे और भी बात करूंगी क्योंकि ये वायरल कांगड़ा और मंडी और हिमाचल के और भी क्षेत्रों में आजकल फैला हुआ है, और जब होता है तो जिसको होता है उसको क्या क्या परेशानी और किस तरह की मानसिक सिचुएशन हो जाती है ये उसी को पता है, इसलिए इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में एंजॉय कीजिए आप कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। वायरल फीवर की देखभाल किस तरह से की जाए घर में उसके बारे में जानकारी लेकर के फिर से आपके साथ मिलूंगी इस गीत के बाद।

छो तो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ही समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे वायरल फीवर के बारे में कि क्या देखभाल हम घर में रह करके अपनी या परिवार के उस सदस्य की कर सकते हैं। वायरल फीवर अगर हो जाए श्रोताओं तो पूर्ण विश्राम हमें करना होता है। शरीर की ताकत बनाए रखने और संक्रमण से लड़ने के लिए बिस्तर पर ही आराम करें। कई बार हमें लगता है कि हम भारी भरकम काम तो नहीं कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं। महिलाओं को अक्सर लगता है कि किचन में चलो छोटा मोटा काम ही कर लेते हैं, तो वैसा भी नहीं करना है। शरीर को पूरी तरह से विश्राम देना है, क्योंकि कई बार छोटे मोटे काम निपटाने के चक्कर में ना हमारा जो बीमारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप बीमार हैं या परिवार का कोई सदस्य इस वक्त वायरल फीवर से जूझ रहा है तो उन्हें पूर्णतः विश्राम दीजिए और इसके साथ साथ डिहाइड्रेटेड रहिए। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। गुनगुना पानी अगर पी सकते हैं तो अच्छी बात है, और पानी के साथ साथ नारियल पानी, ORS का घोल और जूस इत्यादि का सेवन आप जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ बुखार और बदन दर्द को कम करने के लिए मेडिकल स्टोर से कुछ भी अपनी इच्छा से या अपने ज्ञान से उठा करके नहीं ले आना है। जो आपको डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन दी है उसी के अनुसार आप दवाई लाएं और उनका समय समय पर सेवन करें। तेज़ बुखार होने पर माथे पर सादे या गुनगुने पानी की गीली पट्टियां जो हैं वो आप समय समय पर रख कर बदल सकते हैं। श्रोताओं इसके बाद बात करेंगे क्या खाएं और क्या ना खाएं, लेकिन उससे पहले आपको क्या सुनाएं और क्या ना सुनाएं ये भी सोच लेते हैं। आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। वायरल फीवर के बारे में बात कर रही हूँ, इस समय मैं बात जारी रखूँगी लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद। इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, गीत से पहले हम बात कर रहे थे वायरल फीवर के बारे में कि क्या कुछ करना चाहिए और वायरल फीवर में क्या खाना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं। हल्का फुल्का आहार जैसे कि खिचड़ी, दलिया, सूप या उबला हुआ सादा भोजन ही लें। वैसे तो जिस वक्त हम बीमार होते हैं या वायरल की स्थिति से गुज़र रहे होते हैं तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता और मुंह का स्वाद जो है वो पूरी तरह से गायब हो गया होता है। लेकिन शरीर को पोषण चाहिए होता है। शरीर को फिट रखने के लिए और जल्दी ठीक होने के लिए हमें जो है वो हल्का फुल्का भोजन जैसे कि खिचड़ी, दलिया और उबला हुआ जो सूप हम कह सकते हैं दालों का, वो हम ले सकते हैं। अपने आप को अच्छे से डिहाइड्रेट रखिए और तला भुना या फ्राइड खाना खाने से परहेज करें। वैसे मन तो करता नहीं है खाने का, लेकिन कई बार ऐसे भी लगता है कि सिंपल खाने में कुछ स्वाद नहीं आ रहा तो चलो कुछ तड़कता भड़कता खाया जाए। लेकिन ऐसा खाना खाने से भी कोई स्वाद नहीं आता है और जो है जब तक वायरल का असर रहता है तब तक हमें जो है स्वाद के साथ भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि समझौता करना होता है। सिंपल खिचड़ी और जो भी घर में सादा भोजन बनता है उसी का सेवन करें। डिहाइड्रेट रखें अपने आप को और फ्राइड और फास्ट फूड से परहेज करें। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। अलका याग्निक और आमिर खान की भी आवाज है इस गीत में।
1: सुनो। सुना? अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। कार्यक्रम में आगे आप सुनने जा रहे हैं आजा नच ले फिल्म का गीत। राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाजों में

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं, मैंने खूब सारी बातचीत अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ की और साथ ही साथ वायरल फीवर जो आजकल फैला हुआ है हिमाचल में, उसके बारे में भी आपसे बातचीत की। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखिए और जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खे या जो टिप्स आपको भी लगता है कि करने चाहिए उनको आप ज़रूर कीजिए, लेकिन सही समय पर डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिए। जैसे ही आपको

रखिए। और अब कार्यक्रम का लगभग समय जो है वो पूरा होने ही वाला है। आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान और केके की आवाज़ में। और श्रोताओं, इस गीत को सुनवाने के साथ साथ आपसे इजाज़त भी लेते हैं अब कि आज के कार्यक्रम में अपने श्रोताओं के साथ मेरा आज का सफ़र बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी श्रोताओं, तब तक बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले, तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम्हें?
8: Ha ha ha ha!

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: कुछ तजुर्बे देके जाती है, उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं क्या इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊं मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 rupees का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो बनना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ एक और खास जानकारी, एक खास बातचीत के साथ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी दोस्तों, तो कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जो है आप सभी के साथ अपने विचार और ये खास जानकारी जो है वो साझा करने के लिए आज स्टूडियो में उपस्थित है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर अनुपमा संधल जी का, जो कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कार्यरत हैं। तो स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में हमारे इस खास बातचीत में।
1: थैंक यू
0: जी। तो मैम, जैसे कि आप ये जो स्तनपान सप्ताह जो है वो सभी मना रहे हैं और आज की हमारी ये खास बातचीत जो है वो जागरूकता से भरी हमारे दोस्तों के लिए रहने वाली है
1: जी।
0: तो सबसे पहले इसी पे नजर डालते हैं कि ये जो स्तनपान होता है ये क्या होता है।
1: जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जो पहला जो भोजन है बच्चे का वो होता है माँ का दूध
0: जी।
1: मतलब माँ जब अपने स्तन से बच्चे को दूध पिलाती है तो उसी को स्तनपान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है या ऐसा मानना भी है कि जब शिशु पैदा होता है तो जन्म के कुछ समय बाद ही घंटे के अंदर अंदर हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि शिशु को माँ के स्तन के साथ पास लाया जाए, उसके साथ लगाया जाए, ताकि अपने आप एक, जैसे कहते हैं ना कि एक सिग्नल जाता है बॉडी में अपने माता के शरीर में और दूध बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जो वो पहला दूध होता है उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। तो माँ का दूध जो बच्चा पीता है और माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी को हम स्तनपान कहते हैं
0: जी। तो मैम, ये स्तनपान सप्ताह जो है ये कब से कब तक मनाया जाता है और किस महत्व से मनाया जाता है, क्यों इसी सप्ताह में जो है ये मनाया जाता है
1: जी। 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक हर वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। हर वर्ष कोई ना कोई एक थीम होता है, कि थीम का मतलब ये होता है कि उस वर्ष का जो विश्व स्तनपान सप्ताह है वो किस सूत्र पर आधारित होगा या कहाँ पर केंद्रित होगा, जो कि आगे स्तनपान को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा, ज़्यादा उसको ज़्यादा लोगों में जानकारी हम दे सकते हैं
0: जी।
1: तो इस बार जैसे वर्ष 2026 का विश्व स्तनपान सप्ताह जो है 1 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 तक मनाया जा रहा है और इस वर्ष का थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, दैट इज स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। जो भी चीज़ कार्यरत है उसको कैसे किया जाए, मतलब हिंदी में हम इसको कह सकते हैं जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसी को मजबूत करें। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि स्तनपान जो है बच्चे के लिए भी और स्तनपान जो है माँ के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, तो जो भी एक तरीके से स्थिति बनती है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के लिए भी अच्छी हो और माँ के लिए भी श्रेयस्कर हो और माँ समय पर और अच्छे तरीके से स्तनपान बच्चे को करा सके और खुशी खुशी करा सके। इन चीज़ों का हमको, इन बातों का हमें ध्यान रखना है, एक उसके जिसमें कि जैसे हम उसके खान पान का, उसकी मनोदशा का, उसके सेहत का और उसके साथ साथ मान लो कि जैसे वर्किंग मदर्स हैं तो अगर उन्होंने कार्य करने बाहर जाना है, अगर वो वहाँ पर दूर जगह पर जाती हैं तो वहाँ पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इसके साथ साथ घर में भी कैसा माहौल होना चाहिए कि खुशी खुशी जो है माँ अपने बच्चे को विधि पूर्वक स्तनपान करवा सके
0: जी। तो मैम, जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि आज के समय में हम तो खुद को बहुत ही एक तरह से नॉलेजेबल मानते भी हैं
1: जी,
0: तो आपको क्यों लगता है कि मतलब कि हम हर कहीं से ज्ञान लेते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि ये बात जो है वो लोगों के साथ साझा करनी जरूरी है या आज की महिलाओं को इसके लिए जागरूक करना जरूरी है
1: जी। जो स्तनपान करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो दूध है, माँ का दूध जो आता है वो सबसे बढ़िया भोजन है बच्चे के लिए। मेडिकली भी, चिकित्सकों ने भी इसको रेकमेंड किया हुआ है कि जो प्रथम 6 माह है, पहला जो 6 महीने हैं बच्चे के, उसको सिर्फ स्तन का दूध ही, स्तनपान ही करवाना है बच्चे को, और कुछ नहीं देना है। हम लोगों के यहाँ घरों में बच्चों को जैसे शहद दे दे देते हैं, ग्रेप वाटर दे देते हैं, घुट्टी पिला देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं अब प्रूव हो चुकी हुई हैं कि ये इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है बच्चे को, और उल्टा ये नुकसान करती हैं बच्चों को। जो माँ का दूध है ना, एक जैसे कहते हैं ना कि प्रकृति ने बनाया हुआ है, तो पहला भोजन इसीलिए वो बच्चे का है कि जब बच्चा बाहर की दुनिया में आता है तो उसको चाहिए, जब तक गर्भस्थ शिशु है तब तक वो माँ के जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो जन नली होती है, उससे उसको खाना मिलता है। तो वो सिलेक्टिव होता है, जो बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, जो बच्चे की ज़रूरत होती है, वही वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को जाता है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बाहर की दुनिया में आ जाता है, उस समय जो सबसे सही जो उसके लिए खान पान के लिए जो भी चीज़ है, जो भोजन है, वो है दूध, माँ का दूध। और 6 महीने तक आपको किसी भी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई ऊपरी दूध, ना ही कोई जैसे कहते हैं कि शहद हो गया, घुट्टी हो गई, इस तरह इवन पानी तक नहीं देना चाहिए बच्चे को, जब तक कि आपको डॉक्टर सलाह ना दें। कोई रेयर, बहुत ही लिमिटेड केस होता है जिसमें कि कोई अलग चीज़ें जब डॉक्टर बताते हैं तो आपको स्पेशल कंडीशन में देनी पड़ती हैं, नहीं तो 6 महीने तक पूरी तरीके से संपूर्ण आहार है माँ का दूध बच्चे के लिए।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी ने ये बहुत ही खास बातें जानी है कि स्तनपान एक बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है और साथ ही साथ माँ के लिए भी कितना जरूरी है, और किस तरह से इसे जो है वो पहला टीका भी कहा जाता है बच्चे के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, इस बहुत ही खास बातचीत के बारे में और भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ और हमारे साथ आज के इस खास बातचीत में आप सभी जुड़े हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर अनुपमा संधल जी के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और स्तनपान की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्तनपान सप्ताह जो है वो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आप सभी मना रहे हैं और इसे बहुत उत्साहित रूप से मनाना भी चाहिए। एक माँ के लिए, एक बच्चे के लिए ये कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, ये हम सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो मैम, जैसे कि हम बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि जब तक डॉक्टर जो है हमें सलाह ना दें तब तक हमें कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, तो जिनकी डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल में हो तब तो खैर सुन ही लेते हैं लोग, है ना, कई बार तो वहां भी मनमानी कर ही देते हैं।
1: जी, जी।
0: लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी कई बार घर में हो जाती है या मतलब इस तरह से भी, तो वहां किस तरह से लोग, क्योंकि कहते हैं ना जो हमारी सोच है, जो बातें होती हैं समाज में, तो वहाँ समाज के लोगों की बातों में कैसे हम खुद को अवेयर करें और कैसे वहाँ पे हम ये स्टेप लें।
1: हमेशा ये रखें ध्यान कि जब भी बच्चा पैदा होता है, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक जो स्तन होते हैं वो अपने आप को तैयार करते हैं कि आगे आने वाले समय में स्तन से दूध निकलेगा, क्योंकि एक ये फिजियोलॉजिकल एक्शन है
0: जी।
1: तो जब दूध तब तक बनना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वो जो हैं हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, जिनसे बॉडी को ये, अपने शरीर को ये सिग्नल मिलता है अब दूध का बाहर निकलना जरूरी है। तो इस तरीके से लोगों को, नई जो माताएं हैं उनको समझाया जाए कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और माँ थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना होश में आ जाती है इस तरीके से, और तुरंत जो है बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाना चाहिए
0: जी।
1: जब बच्चा, क्योंकि जब एक कहते हैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, माँ के जो स्तन का जो स्किन है और बच्चे का जो मुंह होता है उन दोनों का कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। दोनों का जैसे ही आपस में जुड़ाव होता है अपने आप जो है सिग्नल जाता है, हार्मोनल सिग्नल जाता है और दूध आना शुरू हो जाता है। तो जो पहला दूध, जैसे हमने पहले भी बात किया कि कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रम पहले लोग नहीं देते थे क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा पदार्थ होता है, लोगों को ये शक रहता है कि शायद बच्चा ना लग पाए या इस तरीके का होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोलेस्ट्रम जो होता है एक गाढ़ा पदार्थ है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि जब तक तो बच्चा गर्भ में है तब तक तो माँ का शरीर उसको बचा रहा है बीमारियों से। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे, जब बच्चा बाहर आता है तो बड़ी बीमारियों के जो कीटाणु हैं वो हैं, हवा अस्वस्थ है, कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो बच्चे के शरीर में एक रोगों से या कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उस समय सिस्टम बहुत नया होता है उसका। तो जो माँ का दूध है जो कोलेस्ट्रम के रूप में अभी पहले बाहर आया है, कोलेस्ट्रम में एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो इसलिए कोलेस्ट्रम जो है बहुत जरूरी है। और उसके बाद नियमित रूप से जब भी बच्चा डिमांड करता है तब माँ को दूध पिलाना चाहिए। कोई ऐसा फिक्स्ड शेड्यूल, जैसे कहते हैं ना कई बार कि टाइम टेबल बनाएंगे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे का सिस्टम अपने आप को डेवलप करता है और जब भी बच्चा मांगे ऑन डिमांड होना चाहिए। ऐसा कोई आपको टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं 3 घंटे बाद ही देना है, 4 घंटे बाद। जब बच्चा रोता है जो भी इंडिकेट करता है, जैसे आप उसके मुंह के पास उंगली थोड़ा सा लगाते हैं और वो फटाफट अपने होंठ घुमा के, और वो उसको लगता है कि निप्पल आया है तो, और वो मुंह बनाना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा भूखा है या रो रहा है, तो और आप उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं और अपने साथ माँ लगाती है, तो जैसे ही उसको लगता है कि सन का सानिध्य आया है तो बच्चा शांत होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो बच्चा है भूखा है। तो ऑन डिमांड होना चाहिए जो भी माँ दूध पिलाती है। और दूसरा फायदा स्तनपान बच्चे के लिए बहुत जरूरी इसलिए है कि जैसे हमने कहा 6 महीने तक तो कंपलसरी होना चाहिए, 6 महीने तक कुछ नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध ही देना है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो जो पाचन नाली है वो पूरी तरीके से काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होती। तो जब बच्चे को माँ का दूध मिलता है तो उसका जो GI ट्रैक है, जो पाचन नली है, जो पाचन तंत्र है, वो भी एक्टिव हो जाता है, अपने आप को एक्टिव करता है, ताकि आगे आने वाला जो फीडिंग टाइम है, जो भी शेड्यूल होगा, उसमें वो दूध को पचने की क्रिया करता है। इसके साथ साथ वो जैसे अभी हमने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे के शरीर की बढ़ती है, इसके साथ साथ उसका बहुत सारे जो है कि एक फ़ायदा ये है कि आसानी से वो दूध जो है बच्चा पचा सकता है, क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो पाचन तंत्र है, वो उसमें माँ के दूध में उसी तरीके की कंपोजिशन है जो बच्चे का जो पाचन तंत्रिका है वो उसको पचा सकती है
0: जी।
1: तीसरा फायदा ये होता है कि इजीली अवेलेबल है, जैसे अगर बॉटल पे कोई बॉटल फीडिंग जब हम करवा रहे हैं, किसी बच्चे को बॉटल फीडिंग करवानी पड़ती है, तो बॉटल फीडिंग में क्या है कि जब बच्चा दूध मांगेगा तो क्या होगा, माँ दूध गर्म करेगी, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, पहले वो टेस्ट होगा, चीनी मिलाना है, जो कुछ भी है आपका वो है, बॉटल में भरना है, ये सब, तो उसमें बहुत टाइम भी निकल सकता है। तो इजीली अवेलेबल, एक मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि आसानी से मिलने वाला है, जब बच्चा डिमांड करता है तब बच्चे को दूध मिल जाता है, तो इजीली अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम लोग बच्चे के लिए जब हम ज़्यादा हम चिंतित रहते हैं बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, तो जो माँ का दूध है वो एक तरीके से बिना कीटाणु के है ना, तो उसमें क्या है कि कोई भी कीटाणु है नहीं, और जो बच्चे के शरीर की जरूरत है वही जो जो वहाँ पे पोषक तत्व हैं वो माँ के दूध से अवेलेबल है। जब हम गाय का दूध या गाय का दूध लेते हैं या हम फॉर्मूला फीड जब

0: बच्चों को देते हैं। तो फॉर्मूला फीड में जो है कि आपको बड़ी सारी चीज़ें रेगुलेट करनी पड़ती हैं। गाय का दूध देते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि कुछ जो पौष्टिक तत्व हैं वो ज़्यादा होते हैं और कुछ पौष्टिक तत्व कम होते हैं, तो कभी आपको उसको मिक्स करना पड़ता है पानी, कभी उसमें कोई चीज़ें बढ़ानी होती हैं, उससे क्या होता है इम्बैलेंस हो जाता है जो दूध हम बनाते हैं। तो इसलिए जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए सबसे बढ़िया भोजन होता है। और उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जितनी बार माँ बच्चे को अपनी छाती से लगाती है उतनी बार उनका सानिध्य होता है आपस में, उनका उनका समीपन होता है, आपस में मिलते हैं उनके, तो उतना उन दोनों में इमोशनल बॉन्डिंग जो कहते हैं ना माँ की और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बढ़ती जाती है। तो ये बच्चे के लिए फायदा होता है माँ का दूध जो है इसलिए। और एंटीजन एंटीबॉडी तो है ही है, इसके अलावा जो हमारा जो जो माँ का दूध है उससे प्रॉपर जितना ग्रोथ होना चाहिए और उसके भार में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए वो भी एक निश्चित रूप से उतने ही अमाउंट में होती है। इसके अलावा उसका जो दिमाग है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आगे उसकी जो ये सब हाथ मारना ये सब जो जो भी डेवलपमेंटल टास्क है वो सारे भी सही ढंग से चलते हैं अगर वो माँ का दूध शुरू से लेता है और प्रॉपर तरीके से और 6 महीने तक देते हैं। और दूसरी बात यह है कि कम से कम 6 महीने तक तो देना ही चाहिए विदाउट एनी और कोई और दूसरे भोजन के बिना। वैसे आज अब हम डॉक्टर्स जो हैं ये कहते हैं कि 2 साल तक जब बच्चा दूध मांगे, जैसे बड़ा होने लगता है तो कभी रात में है कभी दिन में सुबह उठ के इस तरीके से, जिन दिन में 1-2 बार जरूर माँ का दूध दीजिए उसको जब तक माँ दे सकती है उसको। 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का ही दूध देना है जो कि बच्चे के पोषण के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उसके मानसिक बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी होता है।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी ने जाना कि स्तनपान के बच्चे को किस तरह से फायदे होते हैं। तो हो सकता है कि जो छोटी उम्र में ही बच्चों को बीमारियां फेस करनी पड़ रही हैं उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है, हम ऐसे डेफिनेटली तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कुछ रीजंस हो सकते हैं इसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो और भी हम जरूर बात करते हैं इसके बारे में मैम से, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास बातचीत आज के इस कार्यक्रम में आप सभी सुन रहे हैं। स्तनपान क्यों जरूरी है एक बच्चे के लिए और एक माँ के लिए। तो मैम, जैसे कि अभी हमने बात की कि स्तनपान के बच्चे को किस तरह से लाभ पहुंचता है ना, क्यों जरूरी रहता है बच्चे के लिए स्तनपान। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कहा भी जाता है समाज में कि जब बच्चे को ज़्यादा ही जब माँ जो है दूध पिलाती है, बच्चा बार बार रोता है, कई बच्चे जो है मतलब 3-3, 4-4 साल तक वो छोड़ते ही नहीं है दूध, माँ का दूध, तो उन्हें ऐसा लगता है कि माँ को उसकी वजह से वीकनेस आती है, माँ की हेल्थ पे उससे जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो एक महिला के लिए स्तनपान के क्या फ़ायदे हैं वो हमारे दोस्तों तक ये बात पहुँचाइए।
1: जी, जब माँ स्तनपान करवाती है तो सिर्फ बच्चे को ही नहीं, माँ को भी बहुत फायदा होता है इसका।
0: जी,
1: सबसे पहले तो होता है कि जैसे माँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गर्भाशय जो है अपनी स्थिति बदल देता है, क्योंकि बच्चा बाहर आता है तो गर्भाशय की स्थिति जो है थोड़ा बदल जाती है। तो जब माँ स्तनपान करवाती है तो जल्दी से जल्दी जो है गर्भाशय जो अपनी सामान्य मतलब प्रसव से पूर्व की स्थिति में पहुंच जाता है। दूसरा फायदा जो माँ को होता है वो होता है कि जब प्रसव के बाद जितनी जो भी रिकवरी होनी है, क्योंकि जब जैसे हम सामान्य प्रसव की जब हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है, तो वो जो ब्लीडिंग है उसको मतलब रेगुलेट करने के लिए स्तनपान बहुत मदद करता है। तो इसका मतलब ये है कि रिकवरी जो है प्रसव के बाद की रिकवरी जो है माँ की वो थोड़ा जल्दी होती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो माँ स्तनपान करवाती हैं उनमें उन महिलाओं में आने वाली उम्र में जब वो ज़्यादा आने वाले समय में उनमें स्तन का और गर्भाशय का जो कैंसर होता है उसके बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हार्मोनल रेगुलेशन में भी कहीं स्तनपान का योगदान है, इसीलिए जो है स्तन कैंसर और गर्भाशय के कैंसर में जो उससे बचाने में इसका स्तनपान का बड़ा फ़ायदा होता है। उसके अलावा ये है कि सबसे पहले है कि जो माँ है वो उनका अपने बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता है। इसके अलावा जो जो अगले फायदे हैं कि जैसे प्रसव से पहले, क्योंकि बच्चे को भी माँ ने भरण पोषण उसका शरीर कर रहा है, तो उस दौरान जो महिलाएं हैं उनका जो है वज़न काफ़ी बढ़ता है, काफ़ी चर्बी और एनर्जी जो है इकट्ठी होती है। तो जो महिलाएं, ऐसा भी देखा गया है कि जो महिलाएं नियमित रूप से और सही ढंग से स्तनपान करवाती हैं वो जल्दी अपने प्रॉपर वेट में आ जाती हैं, और जो एक तरीके से कहा जाता है ना कि अपने जो वांटेड फिगर है उसमें आ जाती हैं। स्तनपान का एक फ़ायदा ये भी है कि आगे उन महिलाओं में ओबिसिटी जो है कहते हैं मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़, इसका मतलब हुआ जो बड़ी उम्र में होने वाला मधुमेह की बीमारी है, उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है माँ का। इसके साथ साथ माँ को ये भी फ़ायदा है कि जब बच्चे, क्योंकि माँ के प्रसव जब हुआ उसके बाद माँ के शरीर में दूध तो बनेगा ही बनेगा, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जब बच्चा मांगेगा तब माँ उसको दूध पिला सकती है, उसको किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि उसको कोई चीज़ बाहर से खरीदनी नहीं है बच्चे को खिलाने के लिए, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि माँ को इतना ज़्यादा हमें इनिशियल वो नहीं करना पड़ता, कोई पेमेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वो अपना माँ और बच्चे के आपस की बॉन्डिंग है। तो माँ जब बच्चा दूध मांगता है तो माँ देती है, तो क्योंकि वो माँ के शरीर में बनता है, तो बच्चा होने के बाद बनता है। हाँ, आपने ये बात कही कि भाई बच्चे जो हैं जब भी दूध मांगते हैं और बार बार माँ देती है तो उसमें कमज़ोरी ऐसे, तो प्रकृति ने माँ के शरीर को ऐसा बनाया है कि जो दूध बच्चा पीता है ना, दूध की क्वालिटी जो स्तनपान के द्वारा जो दूध दिया जाता है उसकी कोई भी क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होती है। हाँ, ये है कि माँ के खान पान का ध्यान उसको खुद को और परिवार को रखना चाहिए। उसके आहार में प्रोटीन की मात्रा सही होनी चाहिए, जैसे दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार वो दूध ले सकती है उसको दीजिए। दालें दीजिए, कोई भी दाल जो उसकी पसंद की दाल है आप उसको दाल दीजिए, कम से कम 2 कटोरी दाल दोपहर में और 2 कटोरी दाल रात में खाए, इतना उसको खाना चाहिए। इसके साथ साथ उसको उसके आहार में आयरन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा और अलग अलग जितने भी विटामिन हैं उनकी मात्रा सही होनी चाहिए। तो उसके आहार में दूध नियमित रूप से दीजिए, दही दीजिए उसको, और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो रेगुलर जो भी आपको अवेलेबल है, पालक मिल रही है तो पालक लीजिए, मेथी है तो मेथी लीजिए। आजकल जैसे हिमाचल में बरसात का मौसम चल रहा है तो चौलाई मिल रही है, चौलाई आयरन कंटेंट भी उसमें बहुत ज़्यादा है और वैसे भी आसानी से पचती है तो चौलाई दीजिए। इवन आप जो ये हम कचालू के पत्ते का साग बनता है वो भी आप उसको दे सकते हैं, अगर माँ खाती है तो उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो महिलाएँ मांसाहारी खा सकती हैं तो उनको चिकन दे सकते हैं, आप उनको फिश भी दे सकते हैं, अंडे नियमित रूप से दीजिए, ड्राई फ्रूट्स जितने मेवे हैं जितने भी कम है मतलब आपकी मर्जी है, काजू तक भी जा सकते हैं, नहीं है कुछ तो आप मूंगफली तो दीजिए, मूंगफली की गिरी जो है वो दीजिए। इसके अलावा जो मौसमी फल हैं हमारे, कोई महंगे फलों की इतनी ज़रूरत नहीं मतलब इतना कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि आपको महंगा फल
0: लेना ही है,
1: जो आपके मौसमी फल हैं वो दीजिए जो उसको पसंद है माँ को। इसके साथ साथ माँ का पानी पीना बहुत जरूरी होता है, तो माँ को जो माँ स्तनपान करवा रही है उसको 2.5 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए रोज, जिसमें कि पानी मतलब पानी वो भी इंक्लूडेड है, जैसे दाल का पानी है वो भी उसी में आ जाएगा, दाल जो आपने ली है ना जैसे 1 कटोरी दाल ली है तो उसमें 1 कटोरी या 1.25 कटोरी जो पानी है उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो टोटल जो दिन में उसका पानी का इंटेक है वो 2.5 लीटर से ऊपर होना चाहिए। इसके साथ साथ परिवार को ये भी देखना चाहिए कि जो माँ स्तनपान करवा रही है, क्योंकि जब भी बच्चा उठेगा जब भी बच्चा दूध मांगेगा तब माँ को पिलाना है, तो इसके साथ साथ माँ को नियमित रूप से आराम करने का समय देना चाहिए, उसको किसी भी तरीके का बोझ नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, खुशनुमा माहौल हो, खुश हो जिसमें कि जब वो बच्चे को दूध पिलाए तो उसका एक तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है माँ के ऊपर भी और बच्चे के ऊपर। इसके साथ साथ माँ को जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब दूध पिलाने के बाद बच्चा सो जाता है तो माँ को भी सो जाना चाहिए थोड़ी देर, तो ये बहुत अच्छी कहावत थी या अच्छा ट्रेंड था, प्रैक्टिस कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब बच्चा जगा होगा तब तो माँ को जगना ही जगना है, और अगर से माँ की नींद पूरी नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा थकान होती है माँ को अगर उसकी नींद नहीं पूरी होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा माँ को मानसिक तनाव से दूर रखना चाहिए, तो कई क्योंकि जब वो खुश होगी और उसको कहते हैं ना फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो अच्छे से वो अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती है और बच्चा भी मतलब एक जैसे हमने पहले बात किया ना कि माँ और बच्चे के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग है, अगर माँ परेशान होगी तो बच्चा भी चिड़चिड़ा फिर आगे हो जाता है, तो सारा एटमॉस्फियर जो है सही होना चाहिए। और इसके लिए ये है कि उनके जो महिलाएं हैं उनके पति भी उनका सपोर्टिव हों, जैसे कई बार होता है ना कि उसको कुछ काम है या कुछ काम कर रही है कहीं पर, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं हमारी तो वहां पर पति को उसका साथ देना चाहिए दूध पिलाने के लिए।
0: जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि जो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं माँ को जो है वीकनेस आती है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे, वीकनेस तब आती है जब फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, फैमिली ध्यान नहीं दे पाती है या माँ खुद भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, वो सिर्फ काम में बिजी या फिर ये सब चीज़ें, तो उस वजह से वीकनेस आती है। बच्चे को दूध पिलाने की वजह से जो है वो वीकनेस नहीं आती है, वो एक माँ के लिए भी फायदेमंद है और बच्चे के लिए भी फायदेमंद है। तो अभी आपने जाने कि एक महिला के लिए एक माँ के लिए जो है स्तनपान कितना ज़रूरी है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो फिर से वापस आते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ, लेकिन इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे इस खास बातचीत के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे हैं स्तनपान क्यों जरूरी है एक बच्चे के लिए और एक माँ के लिए। तो मैम, अक्सर अब तो खैर पहले होता था कि 3 मंथ की जो है मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती जी थी, लेकिन अब जो है वो 6 महीने की कर दी गई है। और आपने 6 महीने ही बताया कि 6 महीने तक तो माँ का दूध पिलाना बेहद जरूरी है। तो अब वो स्पेस एक माँ को लिए जो है वो मिल गया,
1: ये पॉलिसी डिसीजन हो गया हुआ
0: है ना। नहीं तो ऐसा होता था ना कि जैसे ही मतलब कि उस समय से बाहर निकलना और वर्किंग है तो उन्हें फिर जाना पड़ता है, तो वैसे में फिर बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ जाता है ना। तो एक वर्किंग वूमेन के लिए मतलब ये सारी चीजें एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ परिवार का सपोर्ट हो तो बहुत आसानी से
1: समय निकल जाता है
0: जी। और मैम, अक्सर ऐसा चीजें देखी भी जाती हैं कि जब ये गर्भावस्था के बाद जो है बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे अभी आपने कहा भी था कि दही जो है वो एक माँ को खाना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि दही से कई बार क्या होता है, माँ खाएगी तो शायद बच्चे को ठंड लग जाएगी, बच्चा बीमार हो जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो खान पान से लेने मतलब लेकर हो या कोई भी ऐसी चीज़ें, जो हमें स्पेसिफिकली ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, और कौन कौन सी चीज़ें जो नहीं हमें करनी चाहिए
1: जी? जो महिला स्तनपान करवा रही है उसका जैसे हमने अभी बात किया कि खान पान सही होना चाहिए, पौष्टिक खाना होना चाहिए
0: जी।
1: उसके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही होनी चाहिए, आयरन कंटेंट होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, और अलग अलग आहार जो है दूध हो दही हो, ऐसा कुछ है नहीं कि दही के कारण बच्चे को ठंड लग सकती है। हाँ ये है कि कहीं कई बार क्या होता है कि लोग रात में शाम में दही नहीं खाते हैं, तो दही आप उस महिला को आप दिन के समय दे सकते हैं, इतना आप चेंज कर सकते हैं, मक्खन आप उसको खिलाएं। और जैसे हम लोगों के कल्चर में है हम लोगों के कि वो सुंड दी जाती है, तो सुंड जो है दैट मतलब एक तो आपका जो गर्भाशय और वो जो पोस्ट डिलीवरी रिकवरी होती है ना उसमें मदद करता है वो, और दूसरा ये है कि उसमें रेसिपी की डिमांड है कि उसमें मेवे होने चाहिए, तो वो मेवे भी उस महिला की प्रोटीन की और वसा की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि एक आपको पीस जो है मैंडेटरी ज़रूरी होता है हर रोज खिलाना धात्री माता को, तो उससे भी हमारी जैसे कुछ जो भोजन है जो उसको स्पेसिफिक है, अदरवाइज आप दे सकते हैं जिसमें कि आप थोड़े बहुत मेवे हैं, कभी मूंगफली भून के दे दीजिए, कभी इस तरह जो वो आराम से खा सके और जिसको वो पचा सके जो धात्री माता है। अदरवाइज कोई खाना बहुत स्पेसिफिक नहीं है। हाँ ऐसा है कि मान लो किसी चीज़ से उसको पेट फूलता है तो वो चीज़ ना दें उस महिला को, कुछ समय तक ना दें। और अगर से महिला किसी मेडिकेशन पे कोई दवाई खाती है किसी बीमारी की वजह से या कोई और चीज़ तरीके किसी कारण से, तो हमेशा डॉक्टर को पूछें कि वो दूध पिला रही है तो उसको वो खाना है कि नहीं खाना है, और अगर खाने का कोई तरीका है तो वो भी उसको पूछना है। इसके अलावा जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि मॉडर्नाइजेशन है, ज़माना बदल रहा है, तो बहुत सारी महिलाएं, सही है या गलत है जो कुछ भी है, कुछ महिलाएं जो हैं धूम्रपान भी करती हैं और कुछ अल्कोहल शराब भी पीती हैं। तो जो जैसा गर्भावस्था के दौरान भी ये चीज़ें मना होती हैं, तो जो माताएं दूध पिला रही हैं बच्चे को उनको भी जो धूम्रपान और शराब का बिल्कुल ना होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि जैसे मैंने बोला ना कि अलग तरीके का, जो सामान्य खान पान आप खाइए, रोटी दाल चावल दूध दही, मांसाहारी हैं तो चिकन खाइए, मटन खाइए, अंडा खाइए, सब कुछ खाएं आप, सब चीज़ पौष्टिक होने के लिए। जितना पौष्टिक खाना खाएंगे उतना माँ भी स्वस्थ रहेगी और अच्छा दूध मिलेगा बच्चे को, तो बच्चा भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से अपना जो है माताओं को अपना खान पान जो है वो रेगुलेट करना चाहिए, और पानी जो है पानी से जो है एक तो उसके शरीर में थोड़ी थकावट को दूर करता है और दूसरा जो है उसको आराम मिलता है, उसकी पाचन भी शक्ति जो होती है माता की वो भी थोड़ा अच्छी होती है, तो पानी भी जो है ठीक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मेडिकेशन कोई है तो वो हमेशा आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि मैं ये दवाई खा रही हूँ, या जो भी चीज़ अलग से आप रूटीन से हट के खा रहे हैं, जो भी सामान्य आहार से अलग हट के आप खा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
0: जी, तो मैम आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो बहुत सारी ऐसे जागरूकता वाले जो हैं बातचीत चलती भी है और ये अभियान भी चलाए जाते हैं खास करके, तो इसमें कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं, मतलब माताएं जो हैं अब पहले से ज्यादा अवेयर हुई हैं?
1: जी, जैसे आप देखिए कि जो हमारा FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी अब बोला है, इनका भी एक स्लोगन है कि ब्रेस्ट मिल्क इज अ बेबीज सुपर फूड। तो सुपर फूड का मतलब है सब कुछ मिलता है इसमें
0: जी।
1: तो अब ऐसी जागरूकता की जरूरत अभी भी है, बहुत लोगों ने इसको अपनाया है। अब हम अपने आसपास भी देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो माँ का दूध ही बच्चों को प्रेफर करते हैं, प्रेफर क्या पिलाते ही वही है। और सबसे बड़ा जो आजकल आप लोगों ने रुचिका सुना होगा, मिल्क बैंक भी आ गए हैं, मिल्क बैंक, मदर्स मिल्क बैंक भी आ गए हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ माताओं के दूध नहीं बनता है, या कोई भी कारण हो सकता है कि माँ नहीं रही, या कोई माँ मतलब दूध नहीं दे पा रही, या बड़ी सारी रीजन्स हो सकते हैं। तो उसमें उस केस में क्या होता है, आजकल ऐसा भी एक है कि मिल्क बैंक, ह्यूमन मिल्क बैंक कहा जाता है, हमारे यहाँ ऑपरेशनल है, हम हॉस्पिटल्स में भी मिलता है। तो वो महिलाएं जो कि स्तनपान करवा रही हैं, वो बीच बीच में स्तन से उनके मतलब ब्रेस्ट से दूध निकाल के एक्सपल निकाल के उसको स्टोर करके सेल किया, बच्चों को दिया जाता है। कहाँ पर, जैसे मान लो कि प्री टर्म बेबी है, जो पहले पैदा हो गया, सातवें आठवें महीने में जो बच्चा पैदा हो गया, अब उसको तो माँ जा नहीं पाएगी ना फीड करवाने के लिए, लेकिन उस बच्चे को भी माँ का दूध पिलाना है। तो वो जो महिलाएं हैं जो कि अपना दूध दे के छोटे छोटे पाउच बनाए हुए, अपना दूध दे के ह्यूमन मिल्क बैंक को स्ट्रेंथन कर रही हैं, तो वो जो माँ का दूध है उस बच्चे को भी मिल रहा है जो बच्चा इनक्यूबेटर में है। पहले क्या होता था कि वो बच्चे वंचित रह जाते थे, क्योंकि उनको माँ नहीं पिला सकती थी दूध, या माँ नहीं जा पाती थी, तब ये भी होता था। अब वो जो ह्यूमन मिल्क बैंक है वो उनसे दूध मिलता है। तो बहुत सारी, कई बार क्या होता है कि कई महिलाओं में दूध ज़्यादा भी बनता है, तो क्या होता है कि ज़्यादा बनता है तो कई बार बाहर आना भी शुरू होता है, तो वो लोग अपने आप डायग्न पता लग जाता है, तो वो महिलाएं भी डोनेट कर रही हैं मिल्क। तो जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही ह्यूमन मिल्क बैंक भी अब हॉस्पिटल्स में चल पड़ा हुआ है, और जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन बच्चों को भी मिलता है। जैसे मान लो कि कोई बीमार हो गई है, कोई लेडी की डेथ हो गई है, इस तरीके से बच्चे हैं, एक्सीडेंट हो गया या बेहोश है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उन बच्चों को भी माँ का दूध मिल रहा है। तो ये जागरूकता ही है कि जहाँ पर लोगों ने ये जाना कि अगर अपनी माँ नहीं है तो दूसरी माँ का दूध उसको दिया जा सके। और आजकल बहुत महिलाएं हैं जो कि प्रसव के बाद अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाती हैं
0: जी।
1: तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है अभियान का
0: जी,
1: स्तनपान
0: जी। दोस्तों तो देखिए कितनी सही और कितनी अच्छी जागरूकता भरी ये बात जो है आप सभी तक पहुंची, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को नहीं भी जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे, तो ये आप सभी जान चुके हैं। और बहुत ही खास ये बातचीत आप सभी के लिए रही है कि स्तनपान क्यों जरूरी होता है, जो ये भ्रांतियां अलग अलग किस्म की जो हम समाज में फैलाते हैं, जो भी बातें जो है वो करते रहते हैं, तो उस वजह से कई बार जो है माँ को भी तकलीफ होती है और एक बच्चे को भी तकलीफ होती है जो कि माँ के दूध से दूर रह जाता है, या माँ जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है। इन बातों से हटकर ये जो है बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस पे जरूर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो मैम जाते जाते आप क्या मैसेज जो है गर्भवती माँ के लिए या महिलाओं के लिए जो है वो देना चाहेंगी?
1: जी रुचिका, अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो स्तनपान है, सबसे कुदरत ने सबसे बढ़िया भोजन शिशु के लिए बनाया है जो स्तनपान है, इसीलिए FSSAI ने इसको बोला है कि ब्रेस्ट मिल्क इज अ बेबी सुपर फूड, इससे बढ़िया कोई भोजन नहीं है बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए इससे बढ़िया कोई भोजन नहीं है, इसलिए ये पहला ही भोजन होना चाहिए जो बच्चे को मिले। और स्तनपान आप जो नई माताएं हैं वो अपने बच्चे को स्तनपान ही करवाएं, फॉर्मूला फीड और जो दूसरा दूध है उसके ऊपर जब तक आप डॉक्टर से ना पूछ लें तब तक आप उसको ना शिफ्ट करें, और कम से कम 6 महीने

0: पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए।
0: के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित

दी गई। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसुला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में छठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले, तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की ईएमआई आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो ईएमआई भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो।
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसीं जुड़े होए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

0: कदे जे किते भुल भुलेखे मिलेगी तो शाल लै जी ते मेरियां यादां दे जी, चिड़िया हुण भी सांभी फिरदी। चंगा
1: सोहणे सोहणे पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो, ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम इंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

91.2 MHz रेडियो कुंजन धर्मशाला तो सारे श्रोते इंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल ते होर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंचन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला के नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई

0: वेरीफाई होके तेरा अकाउंट में आ जाएगा।
1: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
2: बेबी, ये पर्स है 30,000 rupees का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
3: ओह नो,
4: 30,000 का?
2: हाँ
4: ले दो।
2: सच्ची?
4: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
2: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
4: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
2: बेबी पागल हो क्या? या मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
4: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम्हें?

कानवी दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक तां श्रोताओं कर देन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तुहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

है तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी मैं है एक आशोताओं बढ़ देन कार्यक्रम जग गए तेने सुन देन एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारेयां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने। तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक ता शो तो बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारियां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने। तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि एक ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले, तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो,
10: 30,000 का?
8: हाँ
10: ले दो।
8: सच्ची?
10: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
10: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो बनना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
10: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले, तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा। और आमतौर पर अपना आज वीडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हुआ कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी सभी होने वाले रहा सभी श्रोता रहा। कैसे हैं तो सब उम्मीद कर रहा हूँ तो सब खरे भुणन खुश भुणन और तंदुरुस्त भुणे हैं। श्रोतों जिंदगी में ये तजिंदा ना इंसान खुश बोआ तंदुरुस्त बोआ सेहतमंद बोआ यही चीज जगह सो इंसान चाहता क्या बोल देना। कार्यक्रम हिंदी अपनी गप मंच बहुत बहुत स्वागत है सभी होने वाले रहे सभी श्रोतागण रहा। तो सब श्रोता सोगी भरपूर बनी सकते हैं रोजाना ही बने सकते हैं श्रोतों कॉल करना पैने लेकिन 7081880 9 अक पर तो है कॉल करे सकते हैं इन शोधों नंबर अक मौके फिर आऊँ तू होगी शेयर करीनू आ साझा करीनू आ 7081880 9 अक पर तो है सब श्रोता कॉल करे सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के सोने सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी और वो गीत साझा करे सकते हैं इन शोधों। रोजाना के नशो है सब बखूबी जानू करते हैं शोधों रोजाना के असो नशा तस्करी आया के ने सो पकड़े हो करते हैं नशा बेचने आया के ने सो पकड़े हो करते हैं जाए सो गल डमटाल री बोआ जाए कांगड़े री बोआ जाए कुल्लू मनाले री बोआ जाए कड़िए रे भी गल कौन बोआ शो तो नशा क्या सो बिल्कुल पकड़े हो करता है। और NDPS मामले के ना NDPS मामले लगो के ना सो जरूर करते हैं शो तो आरोपी बेशक जितना मर्जी ना ही लें जितना मर्जी जो मर्जी करी लें लेकिन इन जो पुलिस है शोतों ये भी बिल्कुल तैयार है और जो आरोपी हैं तिन्ने वास्ते कोई जगह नहीं है शोतों। ता कार्यक्रम का आगाज़ किया सो है सब भरपूर करी लेंदे हैं शोतों।

तो सब श्रोता जरूर जुड़ सकते हैं, आगाज़ जरूर, आगाज़ तो बनता है श्रोता, आगाज़ कर देना और आगाज़ तो बाद फिर कुछ एक जानकारी कहना सो तुस हो गया है, जरूर शेयर कर ले, साझा कर ले, जुड़े रहा, बने रहा, वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगे।

0: श्रोता हूँ तो ऐसा बी ट्यून कर रहा FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला और हाँ सचिन कपूर तुसो की बिल्कुल हाजिर है तुंदे सभी रे रेडियो सेट में। क्या हाल चाल है? ठीक ना? उम्मीद भी करनो ठीक बुने तो चलिए आगाज़ बुझगो श्रोतों कार्यक्रम रहा और आगाज़ तो बाद अन्य जानकारी के अनुसार तुसो की असु ज़रूर शेयर करनी ही नींद है श्रोतागण के न सो असु होगी कनेक्ट बुझ गया इन श्रोतों बुझ गया ना अपुस दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दे। नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी नमस्ते। खड़े ना ठीक ठाक?
0: हाँ जी बढ़िया जी। तो बोले तो ठीक ठाक ना?
1: हाँ सर ठीक ठाक। चलू रन क्या मैंने प्रोग्राम ना।
0: अच्छा जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन?
1: हाँ बलून दे खेल रहा हूँ रामा।
0: अच्छा अच्छा और
1: हाँ गाना सुनना मौके बंदे काले महीने यात्रा लगोरी यात्रा इन्हें होते हैं
0: काले तो महीने यात्रा लगोरी।
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी।
1: हाँ हाँ
0: हाँ जी हाँ जी ठीक ना जी सब ठीक ना।
1: अच्छा ये ठीक क्या करना?
0: हाँ जी सब ठीक ना जी। ठीक है जी जरूर हुन ले तो सुए गीत ना जी। ठीक है जी धन्यवाद श्रोतों FM बैंड 91.2 MHz पर है वेडी गुंजर। हाँ और हम सचिन कपूर कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है तो सब भी जुड़े सकते हैं ना। नंबर 7088709 पर ता चलिए जी बहुत सी जानकारी हिन असूल है श्रोतों सो तुस हो गया है ज़रूर शेयर कर दें और जानकारी सो किसो की शोतों जो सब तो ज़रूरी जानकारी हा सो तू हो गया सो ज़रूर शेयर करने की इसी हफ्ते की है शोतों। सो बनना शुरू हुई अब हिम बस प्लस कार्ड जी बिल्कुल ग्रीन येलो और सामान कार्ड जो हिम बस प्लस कार्ड में किया सो कन्वर्ट करी देना हा मर्ज किया सो करी देना हा शोतों 15% तक किया सो छूट भी हा पूरी जानकारी है तो सुधर पहुँच जाता इन शतों। पथ परिवहन निगम हरे बस अड्डे और डिपो में इसी हफ्ते के इसी सप्ताह के शतों सो हिम बस प्लस कार्ड बनाना शुरू बुझ गाने हिन निगम री औरतों की इसी जो लेकर ही तैयारी शुरू बुझ गई इन शतों। ऑनलाइन भी मनु कहने सो कार्ड बनाने वास्ते आवेदन करी सकते हैं निगम निगम की है सो यात्री भी या जो यात्री बनते हैं जो है ट्रैवल कर दें तीन जो है सब यात्री बनते हैं निगम की है शो तो सो यात्री री सुविधा रे वास्ते की है सो अलग अलग श्रेणी में संचालित ग्रीन कार्ड येलो कार्ड और सम्मान कार्ड जो कि असो एकत्रित कर हिम बस प्लस कार्ड शुरू करने रा फैसला निर्णय किया सो लियो हाशो तो नया कार्ड मात्र 2365 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध भूना है श्रोतों। और तुसु दसना चाहते हैं कि इन्या कार्डा 5% से 15% तक रियायत भी मिलने हैं छूट भी मिलने हैं कार्ड बनाने वास्ते कि सो निगम री औरतों श्रोतों एक महीने का समय भी किया सो देना है निगम में किया सो इस कदम रा उद्देश्य या एक कदम जो चुके ठेरा उद्देश्य यात्री जो अखी कार्ड वे माध्यम थों के सो रियायती यात्रा री सुविधा उपलब्ध कराना और अलग अलग कार्डा री व्यवस्था जो समाप्त करना हा श्रोतों। इसो के श्रोताओं तू दसना चाहता है नए हिम बस प्लस कार्ड रे लागू होने थो बाद यात्री जो पुराने कार्ड रे स्थान पर ही इस कार्ड रा उपयोग किया सो करना हा निगम राय मानना हा श्रोतों की एकीकृत कार्ड प्रणाली थो यात्रा जो सुविधा मिलने वे सोगे कार्ड प्रबंधन और संचालन भी अधिक प्रभावी किया सो रहना हाशतों निगम की ऐसो सभी डिपो प्रबंधक और संबंधित अधिकारी जो कार्ड जारी करने की तैयारी पूरी करने वे निर्देश के ना सो दी दी तुरे हिन शतों जानकारी रहा पिटारा की सो ही चलते रहे श्रोतों। हाँ तो सब बन रहे ने समय आज से सचिन कपूर सो गया और बलदा ने श्रोतों रिश्ता सो ही बेहतर है जो तुसु होगी जुड़ी रहा जो तुसु होगी लगाव रखा जो तुसु होगी प्यार रखा जो तुम दे मांग पूछ करा है ना जो तुम दा ख्याल किया सो रखा सो ही रिश्ता बेहतर है। और हर रिश्ते अंदर के सोतों सो प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और हर रिश्ता के सो तदीमा बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है ना। यानी कि प्यार दसना रिश्ते अंदर अपनापन दसना गया सो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ तो है प्यार दसो कर देन और अगला बंदा तो उसको दंगा होगी ट्रीट भी ना करो कर दे तो उसको कुछ समझदा नहीं आ तो फिर सो प्यार मायने ना रखता। सो तो इति पर मुझे एक शायरी की सो याद आया हूँ तो सब भी होनाना चाहता कि रिश्ते अगर झुकने थो सुधरे गंदन तो झुकेगा अच्छा। रिश्ते अगर झुकने थो सुधरे गंदन तो झुकेगा अच्छा, पर बार बार तुस वही झुकना पिया तो फिर रुकेगा अच्छा। जे बार बार तुस वही झुकना पिया तो फिर श्रोताओं रुकेगा अच्छा। जी बिल्कुल, तो हम सचिन कपूर मिलना फिर इस गीत तो बाद बने रहे तो सब बार जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रे। बिल्कुल रिकेश बरजाती हरी आवाज़ में ये गीत था श्रोतों, और गीत तारे बोल हिन काले तमीने जात्रा लगूरे। इस गीता जो है सब जरूर तुसु दगर पहुँचन दिन बने रे जुड़े रे आर जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम में सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव फोन कर देने अपने अपने वीडियो सेट माता श्रोतो तू सभी तक जानकारी पहुंचाने चंद देना है कि भारी बरखा थो के सो जनजीवन कर खानगर का प्रभावित भुआ श्रोतो और मणिमहेश गंद है श्रद्धालु रे की असो मौत भया हिमाचल भर मगे सो 11 अगस्त तक भारी बरखा रहा अलर्ट किया सो बेचारे यश होता जे बिल्कुल मानसूनी बरखा थो कि सो हिमाचल रे कई क्षेत्र में जनजीवन जो प्रभावित जनजीवन के सो प्रभावित हुआ है शो तो जबकि चंबा में आक पंजाबी श्रद्धालु रे जान भी किया सुनी मानसून ने ले ले है शो तो भारी बरखा रे कारण प्रदेश मगे सो 112 सड़क बंद हैं और लगभग 190 बिजली ट्रांसफार्म भी बंद हैं शो तो और काट पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं श्रोतों। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की असो छियत हों 11 अगस्त तक प्रदेश में कई जिला में भारी थो बहुत भारी बरखा रे चेतावनी की अशतों सो जारी कर रहा प्रशासन ने की असो भूस्खलन अचानक बाढ़ और नदी नाले वे उफान थो उफान जो हृदय मनु थो सतर्क रहने रिकिया और अनावश्यक यात्रा थो बचने रे अपील किया सो करे यशो तो बरकरे बिच चंबा जिला में बड़ा हादसा भी हुआ है शो तो मणिमहेश यात्रा पर चल रहा श्रद्धालु अभी थार गड्डी पर किया सो मेले वे आस पास तड़के पहाड़ी थो विशाल चट्टान के असो लुड़े शो तो चट्टान सीधा वाहन रे सनरूफ मा लुड़े और सनरूफ थों लुड़ने थों किया सो पंजाब रहा युवा

बकरी मौके पर ही किया सो मौत बुझे गई शोतों, जबकि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त बुझे गो शोतों। आप पुलिस से किया सो मामला दर्ज कर जांच शुरू करी थी, लेकिन प्राकृतिक मार के शोतों ए इतिया कोई कुछ ना कर सकता। इतियो ना अगर वह कुछ बीमारी बुंदी ना जिया त्यारा पता बुंदा असुओ की असु ए बीमारी असु ए ना खाना ए ना गलाना माफ़ करें ये ना खाना ये ना पकाना, तूना तेल तूना मिर्च तूना लून ना बुना चिंदा है ना, ये चीज़ असु खानी था असु के असु बेहतरीन असु के असु बेहतरीन रहना है। इंया इंया बीमारी रह के असो इंसान अपने आप इलाज करी सकता, दवाई खाई करी के असो ठीक बची सकता हा, लेकिन ये जो एक्सीडेंट बंदा शो तो इति माता पल भर में के अविद इन सेकेंड के असो जिंदगी मौत में बदले गंदे हा। एक्सीडेंट सड़क में चलना के असो वाकई में ये ना बोली सकता है कि एक खरा गुचूरत है इस खरा ही वापस ही ना हा, एक कोई भरोसा नहीं शो तो। और जिंदगी कहने मौत जो गले लगाई लिया है असू बिना पता शो तो है ना। सो हमेशा हूँ तो बलदा रहता शो तो कि खुश रहो करा तंदुरुस्त रहो करा और हंसते मुस्कुराते रहो करा। तो सब श्रोता कॉल जरूर कर सकते हैं जनाब 7081887091 पर नंबर एक मौके फिरे आऊँ तू होगी 10 इनो तो सब रेडी गुंजन धर्मशाला हूँ गर्दन हिंदी अपनी गप्पा कार्यक्रम चल रहा है श्रोताओं और आऊँ तो अपना आरजे सचिन कपूर हा। ता नंबर लिखा जी 7081887091 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं। बहरहाल लेके चलते तू सभी जो इस गीत तरीके नारी

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ तुम ता अपना आज से वीडियो जो कि सचिन कपूर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर भूआ हा श्रोतों बहुत बहुत स्वागत है तुंदा सभी रागमों के फेरी होने वाले रहा इंदे श्रोतागण असू की असो कनेक्ट हो चुके हैं पुछ दिन कौन बलून दिन और कड़ी थो बलून दिन नमस्ते जी। हेलो हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी। नमस्कार सचिन जी।
0: रेडियो सेट रे आवाज ही धीरे कर दिया। हेलो
1: हेलो हेलो
0: नमस्कार जी तुंदा बहुत बहुत स्वागत है वेड़ी गुंजन में।
1: नमस्कार सचिन जी। नमस्कार। और ठीक ठाक है ना?
0: बहुत बढ़िया जी। तो बल्ले तो ठीक ठाक ना?
1: हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया।
0: अच्छा जी कौन बलून देन और कड़ी थो बलून देन?
1: आप दामा फिल्मा अमित कुमार
0: कड़ी थो जी
1: स्लेड गोदामा हूँ।
0: अच्छा स्लेड गोदामा हूँ क्या ना दस तू है अपना अनीश कुमार
1: अमित कुमार।
0: अच्छा ठीक ठाक ने तो है?
1: हाँ जी ठीक है जी बढ़िया जी।
0: और कर लुगरेन के लूर कमाना
1: और फिर चाय रखो लुगड़े लाना तो मैं गाना सुनता प्रोग्राम होने करते मैं चलो गाना से करते वाला समय।
0: अच्छा
1: बनाया थी वे वो
0: कुंडने जी कुंडने के मौके फिर दस ले
1: तेरा मेरा लगन थी वे बनाया।
0: अच्छा तेरा मेरा लगन।
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर सुन लेते सुए गीत।
1: ठीक है जी
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। सो तो एफएम बैंड एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और इन अगले श्रोता आसोगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते कौन बलून देन और कड़ी थो बलून देन? खने आ रहा हूँ क्या ना जी तुंदा?
2: प्रीति।
0: हाँ जी
2: प्रीति स्वीटी
0: स्वीटी की प्रीति
2: जी तो नाइट वाली
0: तो नहीं थी ना तुंदे आवाज नहीं दिया सु तक आवाज ना पूछें दे तुंदे खने आ रहे आले रे ता
2: जी
0: स्वीटी जी बल्लू कर देन है ना जी।
2: हाँ जी
0: जी स्वीटी जी ठीक ठाक ना राजी बाजी ना?
2: हाँ जी तो बल्लू ठीक है ना।
0: बढ़िया जी बढ़िया। और करे लुगरेन
2: बस बार बार खुलती बड़ी जोर है ये तुम्हारे भी ऊपर खराब नाम से और के
0: क्या बात है क्या बात है
2: खनेरे पर सब
0: हाँ खनेरे बरखा हुआ पता बड़ी तेज तरार बूंदी आ खैर अबे तो इतनी बरखा ना भी बूंदी ना लेकिन पहले की सो। हाँ जी
2: हेलो।
0: हाँ जी स्वीटी जी।
2: हाँ जी मैं लाभ बड़ी जोर लग रही है।
0: अच्छा चलो अबे तो हिंदू नाग महाराज जी रे चरना मंच रंद दिनता अबे बरखा तेड़ी तेज बूने बूने है ना जी।
2: हाँ जी।
0: स्वीटी जी क्या है फरमाइश देना चाहते हैं तो है वेडियो गुंजन मंच
2: आज मैं अपने डैडी की फरमाइश दूंगी ना।
0: डैडी की फरमाइश जी।
2: हाँ जी ईशान भारद्वाज का दोस्त लिया लगा
0: नहीं ईशान भारद्वाज का कुंडने गीत है
2: गोजरिया ला
0: गोजरिया ला।
2: हाँ जी
0: तू ये लगुंदे कि बड़ी मुश्किल गल करूँ एक्चुअली इंदे ना इस समय की असो स्टूडियो मंच सेटिंग चल रही है नवा माइक लगो और नई चीज चलू कर दी ता थोड़ा करी मुंजो उड़ने में या थोड़ा लगू करदा ता थोड़ा रिपीट करू करदा गल्ला जो अच्छा तो गोजरी वाला गीत जी जरूर होना ले तू है ना जी। ठीक है जी जरूर जरूर।
2: हाँ जी ठीक है धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस समय हिंदी अपनी गप्पा गेंसो चल रही था आंख मुख के फिर बहुत बहुत स्वागत है बिल्कुल धर्मशाला था बरखा बूना असंभव है श्रोतो बिल्कुल बंदे और खनेरे में धर्मशाला ने खनेरे में किसो सब तो ज़्यादा बंदे बहरहाल बहुत सारी गल लेकिन समय रहा थोड़ा करे अभाव है श्रोतों को जो कि मैं दसूँगी इन स्टूडियो में थोड़ी करी सेटिंग की ऐसा चल रही है और इन बड़े प्यारे भाई दिल्ली था स्पेशल किया इन स्पेशल टीम है श्रोतों जो इन आवाज़ जो तुसु तक पहुँचन देन। तो यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल चल देन और शाइना कपूर और सुरेखा जी री फरमाइश मगे सोई गीत सुनते हैं।

श्रोता एफएम बैंड 91.2 तो ये मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी उनको रोर कार्यक्रम इस वक्त इन दी अपनी गप्पा के सो बिल्कुल लाइव चल रही थी वीडियो सेट में। हालांकि समेरा बड़ा हवा शतों और फरमाइशा असु लेकिन सो बहुत ज़्यादा इनता आइए धीरे धीरे तेरा मेरा लगन अरे इस तरीके नारी के सो जरूर चलते हैं इन श्रोतों को क्योंकि लगन भी अगर मिलेगा अंता जिंदगी की सो खरी बुचिगन दिया आसान बुचिगन दिया जिंदगी में जितनी भी दुख तकलीफ है इन सो सो डगर के आसो आसान लग दिया श्रोतों और हम सफर अगर ठीक ना हुआ था फिर जिंदगी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो चुकी है। बहरहाल उन दिन राज जय रीरी गौराई गीत

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो तो सब हूँ कर देने अपने अपने रेडियो सेट में। फिलहाल श्रोताओं इजाजत दिया वक्त उसे को तू सब भी तो इजाजत लेने रहा और गंदे गंदे बस बोलना चाहो तू सब भी जो कि माँ बाप री सेवा जरूर करा हक हो रे री सेवा की सो जरूर करा और हमेशा खुश रहो करा श्रोताओं हर किसी री मदद हेल्प की सो जरूर करो करा जो कि सोगी और सोगी है सब सोच देन पढ़ दे इनकी कर्म के सो सो गंदे हिन छोतो और सो अक्सो नदी के सो टपने बुंदे ना तड़ी पाप और पुण्य रखे सो पता लगदा सो बरहाल खरा खरा करा खरा खरा बहुत सब भी होगी मौसम रा आनंद लिया हंसी खुशी होगी लिया और हंसते रहो करा मुस्कुराते रहो करा हंसना लाइफ वास्ते बहुत जरूरी है दुख बीमारी बहुत दूर बुंदी ही हंसते हंसते ताऊ सचिन कपूर तुस्तों लेने इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि एक ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर हूँ। शोधो, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में जो है वो थोड़ा सा वर्किंग चला है, हमारे माइक और भी जो हमारे चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, तो थोड़ा सा खेद जो है वो हो सकता है हमारे सभी प्यारे श्रोताओं, लेकिन यूँ ही बने रहेगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ गूंज अपने की। थोड़े से नए टूल्स जो है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत जो डिस्टर्बेशन है वो हो, लेकिन आप दूर मत जाइए, हम आपके साथ हैं, आपके घर पे आपके अपने वीडियो सेट के साथ वीडियो गुंजन धर्मशाला में।
4: रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
5: ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
6: ओह नो, 30,000 का?
5: हाँ
6: ले दो।
5: सच्ची?
6: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
5: हाँ हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
6: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो बनना पड़ेगा, और दूसरा घर की ईएमआई आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
5: पागल हो क्या? क्या मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है? आप क्या ईएमआई भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो।
6: फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम्हें?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

91.2 पर श्रोता, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

फ्रीक्वेंसी हेलो फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और हम हाजिर हो गए हैं आपकी सेवा में लेकर ढेर सारी जानकारियां और प्यारे प्यारे गीत श्रोताओं।

मौसम बहुत सुहावना है और बारिश इस समय बरस रही है। इस बारिश में अपना ही एक अलग मज़ा होता है। बारिश का एंजॉय भी करना चाहिए और बारिश से बचाव भी करना चाहिए। तो श्रोता थोड़ा सा एंजॉय करते हैं बारिश में और आप सब तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन यानी आरजे सुमन। तो श्रोताओ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और गीत हमने बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया सा सुना जिसके बोल थे मेघा रे मेघा रे। जी हाँ श्रोताओ मेघा आज खूब बरस रहे हैं और काफ़ी बारिश हुई है और इन दिनों में बारिश होना भी बनती है क्योंकि अगर बारिश ना हो तो मौसम का हमें बदलाव का पता नहीं चलता है और हमारे यहाँ जो है ऋतुओं का परिवर्तन होता ही रहता है और ऋतु परिवर्तन हुआ है तो बारिश का बरसना तो बनता ही है। खैर मौसम के हिसाब से बारिशें होना भी बेहद ज़रूरी होती है और बरसात की बारिशें गर्मी और लू से हमें राहत देती है। हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उसके बाद जब बारिश होती है यानी बरसात की बारिश होती है तो बहुत ही राहत और बहुत ही सुकून देती है, वातावरण को ठंडा और साफ करती है और साथ ही साथ किसानों के लिए खेती तथा फसल की पैदावार के लिए भी पानी का स्रोत प्रदान करती है और बहुत ही फ़ायदा हमारे किसानों को होता है और किसानों को फ़ायदा होगा तो भी कहीं ना कहीं फसल भी अच्छी होगी और हम लोगों को भी अच्छी फसल मिल पाएगी। किसानों की खेती की सिंचाई के लिए मुफ्त और प्राकृतिक पानी मिल जाता है। धान और अन्य खरीफ फसलें अच्छे से विकसित होती हैं। सूखी और बंजर जमीन में नमी लौट आती है। खैर आजकल बरसात के दिनों की बात की जाए तो बरसात झमाझम होती है और नमी तो खूब सारे जो है बनी ही रहती है। धरती के नीचे का पानी भी रिचार्ज होता है और तालाब नदियाँ और झीलें पानी से भर जाती हैं। हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण साफ हो जाता है और अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों पर जो जमी हुई धूल और मिट्टी गर्मियों के दिनों की होती है वो भी बरसात के दिनों में साफ हो जाती है और हरियाली जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी लगती है। तो श्रोताओ इस हरियाली को हम महसूस और भी करेंगे गीत के बाद। तो फिलहाल कार्यक्रम में फिर से रुकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगले प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ, सच में श्रोतो, इसी तरह का प्यार होता है। प्यार में वक्त भी गुजारना मुश्किल होता है। हर समय बस अपने साथी से मिलने की चाहत होती है कि कब हमें साथी मिले और कब दिल की बात उसे कहें, उसके साथ टाइम व्यतीत करें और मन को सुकून मिल जाए। जी हाँ, मन को सुकून देने के लिए हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमें मन को सुकून मिले। इसके लिए हम गीत भी सुनते हैं, डांस भी करते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। अपनी पसंदीदा कोई भी शौक अगर हमारा है तो उसे भी हम करना चाहते हैं। तो फिलहाल गीत से पहले श्रोतो, हमारी बातचीत हो रही थी मेघा के ऊपर, यानी बादलों के ऊपर, बारिश के ऊपर, क्योंकि झमाझम आजकल बारिश बरस रहे हैं। और क्यों ना थोड़ी सी बात इसी की कर ली जाए, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं मौसम जब बरसता है तो, और बहुत ही खूबसूरत एहसास उस समय होता है। प्रकृति की नेमतों में से एक है बारिश। जब हम छाता छोड़कर आंखें मूंद कर भीगने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सेहत को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एकदम गर्म शरीर पर बारिश पड़े तो हम बीमार भी हो जाए, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि बारिश की बौछारें हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। और बारिश में भीगने से पित्त जो शरीर में होता है उससे भी कहीं ना कहीं हमें राहत मिलती है। और बारिश की बौछारें धरती पर एक अलग ही रौनक ले आती है। हरा पत्ता नया और धुला धुला सा लगता है। पेड़ों में आई इस तरह की हरियाली को देखकर हर व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। इस तरह गर्मी की तपिश के बाद जब बारिश की बूंदें शरीर पर पड़ती है तो तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। और साथ ही साथ श्रोतो, बारिश का मौसम मनुष्य के शरीर पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बातचीत आपके साथ आज ज़रूर करेंगे। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और साथ साथ में हम आपका मनोरंजन भी करवाते हैं प्यारे प्यारे गीतों के संग। तो बिल्कुल देरी न करते हुए श्रोताओं, आप तक पहुंचा रहे हैं हम कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई है आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन। तो आज हम बारिश के बारे में बात कर रहे थे कि कितने फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर के लिए बारिश से। तो बारिश पर जो है, गर्मियों के मौसम में त्वचा की समस्या का मुख्य कारण जो होता है पसीना होता है। बार बार पसीना आता है और बार बार हम अपने मुख से पसीने को पोंछते हैं। ठंडे बारिश के पानी में स्नान करने से इन चक्तों से हमें राहत मिलती है और कहीं ना कहीं पसीने से भी राहत मिलती है। और रेन बाथ न केवल हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है बल्कि रैशेज का भी इलाज करता है। और बारिश का पानी हमारी त्वचा के तापमान को संतुलित करता है और गर्मी से होने वाले रैशेज से भी कहीं ना कहीं छुटकारा दिलाता है। तो हुए ना श्रोताओं, कितने सारे फायदे बारिश के। और हार्मोन संतुलन भी ये करता है। बारिश में भीगना हार्मोन को संतुलित करने का एक शानदार तरीका होता है। और बारिश का पानी हार्मोन को नियंत्रित करने के अलावा कान की समस्याओं के लिए भी कारगर होता है। कान में किसी प्रकार का संक्रमण का इलाज करना हो तो, कान के दर्द को दूर करना हो तो कोशिश करें बारिश में ज़्यादा समय ना बिताएं, क्योंकि ये हमें बीमार भी कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं श्रोताओं, ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक भी होती है। हर चीज़ लिमिट में ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि रेडियो वाले हमें कह रहे हैं बारिश में भीगने के लिए और आप भीगना शुरू कर दें और बीमार पड़ जाए। श्रोताओं, फिर बाद में आप हमें गालियां निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब आपको कभी लगे तो आप थोड़ा सा बारिश में भीग सकते हैं। ये नहीं कि बार बार उसमें भीगना है, भीगने से भी हमें नुकसान होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। और बरसात के दिनों में भीगने से जो है वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो थोड़ा सा हर चीज़ लिमिट की ज़रूरी होती है, जितना हो सके अपना बचाव भी करना है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इस प्यारे से मौसम को आपने एंजॉय भी करना है। फिलहाल इस समय एंजॉय करना है कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शो तो इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो थोड़ी सी हम बारिश की बात कर रहे थे, तो जब हमारी बातें शुरू हो जाती हैं श्रोताओ तो एक के बाद एक बात दिमाग में आती जाती है, और बारिश की बात हो रही थी, क्यों ना थोड़ी सी बात को और बढ़ा लिया जाए, क्योंकि मौका मिलता है तो मन करता है हर दिल की बात अपने दोस्तों के साथ कह ली जाए। तो श्रोताओ, बारिश में नहाने से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन तनाव को कम करते हैं और हमें तुरंत खुश करते हैं और दुनिया की चिंताओं से थोड़ा सा राहत भी दिलाते हैं। मौसमी बारिश में नहाकर थोड़ा सा हमें जो है एक मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी भी मिल जाती है। आज अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो बारिश का पानी बहुत हल्का होता है और इसका pH एल्कलाइन होता है। ये हमारे दिमाग को पल भर में तरोताज़ा करने की ताकत देता है। बारिश के पानी में सूक्ष्म जीव होते हैं जो विटामिन B12 का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। यदि विटामिन प्राप्त करना चाहते हैं तो 10-15 मिनट के लिए बारिश के सुरक्षित रूप से हम स्नान कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं को अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे, क्योंकि बचपन में हम लोग इसी तरह से किया करते थे कि बारिश में ज़्यादा भीगा करते थे और नहाया भी करते थे। जब भीगना तो नहाना तो खुद ब खुद हो ही जाता है, और उस समय में हमारे बुजुर्ग यही कहते थे कि बारिश में नहाने से पित्त जो होती है शरीर में, उससे हमें कहीं ना कहीं राहत मिलती है। तो कुछ घरेलू उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर हम छोटे मोटे रोगों को अपने शरीर से दूर भी भगा सकते हैं। तो फिलहाल हमें इस समय भगाना तो कुछ नहीं है, लेकिन सुनवाना है आपको गीत। तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, हम अपने आपके मनोरंजन का रखते हैं पूरा पूरा ख्याल और ध्यान। तो आइए बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर, एंजॉय करते हैं।

14 इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, थोड़ा सा हम बारिश की बात कर रहे थे, तो क्यों ना थोड़ा सा हरियाली की ओर रुख करें, अपने पौधों की ओर थोड़ा सा ध्यान दें। बरसात की फुहारें धरती की हरियाली में नई चादर ओढ़ा देती हैं। भीगी मिट्टी, ठंडी हवाएं और हरियाली का जादू पौधों को बढ़ाने के लिए बेहतरीन माहौल बनाता है और बारिश और कम धूप पौधों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। और पौधों के लिए हम बात करें तो बहुत सारे पौधे हम अपने घरों पर लगाते हैं और लगाने भी चाहिए। सिर्फ सजावटी पौधे ही नहीं होने चाहिए, बल्कि पुदीना, धनिया, तुलसी, करी पत्ता, अजवाइन, लेमन ग्रास, हरा प्याज और इसके साथ साथ रोजमेरी, सेज और मेथी भी घर के अंदर गमलों में उगाए जा सकते हैं। इन्हें लगाने से हमारे घर पर प्राकृतिक ताजगी और रसायन मुक्त चीज़ें मिल जाती हैं। ये बाज़ार पर निर्भरता और हमारी कम हो जाती है और खर्च भी कम होता है। हरे भरे पौधे घर का वातावरण ताजगी से भर देते हैं और मानसिक सुकून भी देते हैं। तो मानसिक सुकून तो हमें बहुत सारी चीज़ों से श्रोताओं मिलता है, कहीं ना कहीं गार्डनिंग से भी मिलता है, संगीत से भी मिलता है। अपनी पसंदीदा कोई भी कार्य जो है हम करें, उससे हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। तो आइए थोड़ा सा सुकून हम लेते हैं गीतों के जरिए और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो सुनते रहिए रेडियो।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। आज के दिन को हम मना रहे हैं हिरोशिमा दिवस। हर साल 6 अगस्त यानी आज के दिन को हम हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। सन 1945 में हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले को याद किया जाता है और पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। साथ ही साथ शांति तथा परमाणु निःशस्त्रीकरण के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। और इस दिन किसी एक देश या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। जापान और दुनिया भर में इसे एक गंभीर अवसर के रूप में याद किया जाता है जो युद्ध की मानवीय कीमत और शांति शिक्षा समरण अहिंसा के निरंतर महत्व को उजागर करता है। तो श्रोतो ये तो थी आज की जानकारी। जानकारियां और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं उन्हें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार हम फिर से वापिस आ चुके हैं। और हम कार्यक्रम से पहले बात कर रहे थे हिरोशिमा दिवस के बारे में। इसके महत्व की थोड़ी सी बात करें तो हिरोशिमा दिवस का महत्व स्मरण, ऐतिहासिक ज्ञान और इसके साथ साथ जुड़े वैश्विक शांति संदेश में निहित है। ये लोगों को याद दिलाता है कि युद्ध में मानवीय परिणाम होते हैं और घटनाओं के बाद भी लंबे समय तक ये बने रहते हैं। और साथ ही साथ श्रोतो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते हैं जिन्हें याद किया जाता है। आधुनिक युग में हिरोशिमा दिवस अक्सर परमाणु निःशस्त्रीकरण, मानवीय मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित चर्चाओं से भी जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ इसका संदेश आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये सीमाओं में इतिहास को दोहराने की बजाय उसे सीखने का आग्रह करता है। और शांति शिक्षा में रुचि बढ़ाने वाले बहुत सारी बातें होती हैं जो वेदांतों से शांति शिक्षा की आवश्यकताओं महत्व पर लिखे जानकारियां हम तक पहुंचती हैं। और हम सभी इन बातों को बड़े ही बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हिरोशिमा दिवस के महत्व की बातचीत और जानकारियां और भी हम जो है लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत सारी बातें हमारी हो रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर देना चाहिए विराम और आप तक पहुँचाना चाहिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आइए सुनते हैं अगले गीत को और इंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर इस समय चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। तो हम हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस की बात कर रहे थे। हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस एक ही नहीं है, हालांकि सार्वजनिक स्मृतियों में ये दोनों दिवस आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हुए बम हमले की स्मृति में मनाया जाता है, जबकि नागासाकी दिवस को नागासाकी से संबंधित एक अलग घटना के रूप में याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास और परमाणु बम की स्मृतियों के बारे में जानने के दौरान कई पाठक इन दोनों दिवसों को एक साथ अध्ययन करते हैं और प्रत्येक शहर का अपना स्मारक इतिहास है। ये दोनों आयोजन एक साझा वैश्विक संदेश में योगदान करते हैं और पीड़ितों को याद करना और शांतिपूर्ण भविष्य को बढ़ावा देना आज के दिवस का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो श्रोता, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: तो इसी गीत के साथ है, साई के साथ बज चुके हैं और कार्यक्रम में समय हो गया है समाचारों का।
1: योजना देश की एक महत्वपूर्ण पड़ाव, इसके देश को प्रति शेष पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और वृद्धि का लक्ष्य। योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित
2: बढ़ाने का टारगेट करीब 5 मिलियन पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। 35,000 करोड़ रुपीज नेशनल जीडीपी को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास महाराष्ट्र हरियाणा से तेजपुर तक 135 किलोमीटर लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा में चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान। सरकार ने कुछ अतिरिक्त खर्च पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान अतिरिक्त खर्च के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता को सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को

केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले दो वर्षों से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की है। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वली शेट्टी को हराया। अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज भी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में आइए कुछ स्थानीय जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास तथा जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहाँ HP शिवा परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक में परियोजना के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि HP शिवा परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत निर्धारित 3000 हेक्टेयर लक्ष्य के तहत अब तक लगभग 2412 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा चुका है, जिसमें से 1543 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य पूर्ण हो चुका है। 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य जुलाई के सितंबर तक किया जाएगा और शेष क्षेत्र में कार्य जनवरी फरवरी 2027 के दौरान पूर्ण किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में हम फिर से वापिस आ चुके हैं और लेकर ढेर सारी जानकारियों का पिटारा तो हमारा बड़ी देर से खुला है, यानी कि जब से हम आपके साथ जुड़े हैं तब से हम जानकारियां लेकर ही आए हैं। तो थोड़ा सा जानकारियों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यक्तित्व निखार के बारे में। व्यक्तित्व निखार में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। थोड़ा सा हम अपने व्यक्तित्व को निखारने के बारे में बात करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही मायने रखती है। हम सभी ने कई बार ऐसा महसूस किया है या हमारे आसपास ऐसा घटित होता है कि कई बार हमने देखा है कि पढ़ने में बहुत लाइक बच्चे होने के बावजूद भी कई बार किसी इंटरव्यू पर जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि वो कहीं भूल रहे हैं, कुछ घबराहट होती है। और ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जब हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो एक डर हम सभी के बीच में बना रहता है। तो होता क्या है कि श्रोताओं, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी सही होना बेहद ज़रूरी होता है। बॉडी लैंग्वेज का सुधार होना भी ज़रूरी है। और कई बार जो नॉर्मल से बच्चे होते हैं, जो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, मीडियम से होते हैं, वो कहीं अपना टेस्ट क्लियर कर देते हैं और बहुत लाइक बच्चे होने के बावजूद भी वो इंटरव्यू में रह जाते हैं। और बॉडी लैंग्वेज यानी जो कम्युनिकेशन, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारी सोच और मन की स्थिति को दर्शाता है। इंटरव्यू में सिर्फ ज्ञान की सफलता नहीं देखी जाती है बल्कि अच्छी बॉडी लैंग्वेज होना भी बेहद ज़रूरी होता है। और बॉडी हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है, इसलिए ज़रूरी है कि इंटरव्यू से पहले आप खुद पर काम करें और गलती करने से बचें। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाएं, घर से अपनी तैयारी करके जाएं और हर बात का सटीक सा अच्छा सा जवाब दें कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है कि वो समझ पाए कि आपके व्यक्तित्व में काफ़ी निखार है और आप अच्छे से हर बात को कह सकते हैं। इसके लिए स्वभाव और सोच भी अच्छी होना बेहद ज़रूरी होती है। और इंटरव्यू के दौरान परीक्षा के कमरे में जब भी हम पहुंचते हैं तो थोड़ा सा मन में ये सोच लेना चाहिए कि हम इंटरव्यू में बैठे हैं तो हर कुछ अच्छा करना है, हमने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, अच्छा बोलना है ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे। और दरवाजे को हल्का सा खटखटाकर प्रवेश कर हमें उनसे इजाज़त लेकर ही अंदर जाना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता का अभिनंदन करें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ज़रूर रखें क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास जो है झलकता है। और बैठने को अगर कहते हैं तो आप कुर्सी पर आहिस्ता से खींच कर बैठ जाए, ऐसा ना हो कि बिन कहे आप बैठ जाए या फिर बहुत ही आवाज़ करके बैठे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है और सामने वाले जो हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं। तो और भी हम बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी हुई बातें श्रोताओं आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापिस आ चुके हैं और एक बार फिर से सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो कार्यक्रम में आइए कुछ स्थानीय जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परियोजना तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विभिन्न सड़कों परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है और विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 305 के तहत सैंज लुहरी बंजार ओट मार्ग पर बंजार से ओट तक सड़क के सुधार और टैरिंग के लिए 25.11 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने केंद्रीय सरकार से जलोड़ी सुरंग परियोजना के तहत काफ़ी राशि जो है स्वीकृति की प्रक्रिया से तेजी लाने का आग्रह भी किया है। केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को स्वीकृति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ थोड़ा सा सावन के झूलों की ओर रुख करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, तो आइए एंजॉय करते हैं इस गीत को।

जी हाँ श्रोताओ, सावन के झूलों में तो हम वापिस आ चुके हैं और बहुत सारे श्रोताओं को अपने साथी से भी यही उम्मीद है कि सावन में वो भी उनके साथ ज़रूर आकर मिले। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में हम कर रहे थे बातचीत आपके साथ बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में। अगर हम बात करें अपने बैठने की मुद्रा के बारे में, तो साक्षात्कार यानी कहीं भी हम बाहर जाएं, इंटरव्यू पर जाएं, तो बैठने के तरीके से ही हमारे व्यक्तित्व को भांप लेता है। और इसलिए पैरों तथा हाथों को क्रॉस नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ ज़्यादा पैरों को हिलाना भी नहीं चाहिए और झुककर भी नहीं बैठना चाहिए। कई बार क्या होता है कि डर की वजह से हम सोचते हैं कि अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम अपना जो है फेस नीचे की ओर कर लेते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास की कमी का आभास करवाता है। और खुद को कंफर्टेबल करना है तो साक्षात्कार के सवालों का सही से जवाब हमें देना चाहिए। जो वो पूछते हैं वो बताएं और चेहरे पर हल्की मुस्कान ज़रूर रखें, क्योंकि मुस्कान एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं खुशी ला देती है। और अगर साक्षात्कार हमसे हाथ मिलाने को कहता है तो हाथ मिलाएं, और कठोर ढंग से हाथ मिलाना जो है गलत प्रभाव डालता है। इसलिए गर्मजोशी के साथ हम हाथ मिला सकते हैं हल्की मुस्कुराहट के साथ। इससे पता चलता है कि हम ऊर्जावान और खुश मिजाज महिला या पुरुष है। अगर हाथ मिलाने से हम की पहले हम खुद कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत जो है हमारा मैसेज चला जाता है। इसलिए साक्षात्कार अगर हाथ मिलाता है तभी हमें हाथ मिलाना चाहिए, और बात को दिलचस्प बनाने के लिए हाथों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर स्टेज होल्ड करता है, कहीं बैठा हो, तो वो अपने हाथों को बड़े अंदाज से हिलाता है और कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि जिसे देखकर हमें भी अच्छा लगता है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो इस तरीके से सहजता से बैठे कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो सामने बैठा है, जो साक्षात्कार है, उसे लगे कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। तो आजकल के समय में कॉन्फिडेंस होना बेहद ज़रूरी है, तब भी ही कहीं ये पता चलता है कि आप पढ़े लिखे हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं, और इसी से ही पता चलता है। जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताई कि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस की हमें कमी रहती है, और इसलिए अपने कॉन्फिडेंस अपने आप में पूरा रखें, आत्मविश्वास हमें अपने ऊपर पूरा होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हम मंजिल को भी हासिल कर सकते हैं और जहाँ भी कहीं गए हैं वहाँ से भी हमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों का श्रोताओं हमें ध्यान रखना चाहिए, और कार्यक्रम में इस समय हमें ध्यान रखना है अपने श्रोताओं का और आप तक पहुंचाना है कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

हाँ श्रोताओं, बिल्कुल सही बात कही है। अपनों के बात के बिना बिल्कुल जिया नहीं जाता है। अपनों के साथ ही ज़िंदगी होती है और अपनों के साथ ही जीने का भी मज़ा आता है। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों और गीतों के साथ कार्यक्रम में फिर से हम रुक करते हैं थोड़ा सा स्थानीय जानकारियों की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला क्षेत्र में कस्यूमपट्टी विधानसभा क्षेत्र के करीब 48 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने मोशावर में नए खंड विकास कार्यालय भवन का उद्घाटन किया है और भूटा कुफर में 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय मशोवरा में, बल्देया में 3.64 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उपमंडल कार्यालय, 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए प्राद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन और लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संपर्क सड़कों का शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में क्षेत्र की सड़कें और अन्य सुविधाएं बेहतर होंगी। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियों को फिर से थोड़ा सा हम यहीं पर रोकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे, अपने व्यक्तित्व को निखारने के बारे में बात कर रहे थे। तो छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत मायने कई बार रखती हैं श्रोताओं। और अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहे हैं तो हमेशा हमें फॉर्मल ड्रेस का चयन करना चाहिए। चमकीले रंगों के बजाय हल्के रंग के कपड़े पहनकर और बालों का स्टाइल सिंपल ही रखना चाहिए, तब कहीं जाकर हमें जाना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे जो है व्यक्तित्व का भी पता चलता है और अच्छा लगता है इंसान दिखने में भी। हमारी आंखें बिना बोले ही बहुत कुछ बयां कर देती है। आंखों का संपर्क बना कर रखें और हमारे व्यक्तित्व को भी कहीं ना कहीं श्रोताओं दर्शाती है। यदि हमेशा साक्षात्कार की आंखों में देखकर बात करते हैं तो इससे हमारा आत्मविश्वास के साथ साथ हमारी ईमानदारी भी झलकती है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी बातचीत और भी हम आपके साथ करेंगे, लेकिन बातों के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी जो है बातें ज़्यादा हो रही हैं और गीत संगीत थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन फिर से हम वापिस रुख करते हैं गीत संगीत की ओर और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो।

0: ईद के साथ है कार्यक्रम में समय हो गया है 7:45 और आइए सुनते हैं समाचार।
1: 48 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा का आरोप, करोड़ों का कर्ज देने के बावजूद चुनावी गारंटियां पूरी नहीं कर पाई सुक्खू सरकार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की भेंट। हिमाचल से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से की चर्चा। और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति ने सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र में 48 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। इस अवसर पर मशोबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं के आज उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं उनसे पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को स्वच्छ व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत यहां से पंचायतों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से ई वाहन प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में आने वाले समय में 700 पंचायतों को ये ई वाहन दिए जाएंगे और अभी महज पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.5 करोड़ रुपए की लागत से 133 ई वाहन पंचायतों को दिए जाएंगे।
2: हमारा लक्ष्य है कि हिमालय और पर्यावरण की रक्षा करते हुए हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य। इसी दृष्टिकोण से अभी हमने यहाँ ई व्हीकल जो पंचायतों को दी है स्वच्छता के लिए उसका अभी शुभारंभ किया। पूरे प्रदेश में आने वाले समय में 700 पंचायत में इस ई व्हीकल का वितरण किया जाएगा। अभी महज पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.5 करोड़ की लागत से 133 ई व्हीकल पंचायत को दी जाएगी और जो पंचायत है वो उसका संचालन करेगी, वो उसमें ई व्हीकल के लिए अपना ही ड्राइवर रखेगी और पंचायत का जो फंड हम उनको उपलब्ध कराएंगे उससे उसकी सैलरी भी उनको उपलब्ध कराएंगे।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज नगर निगम शिमला के ग्रीन शिमला अवर शिमला अभियान के अंतर्गत अपने सरकारी निवास ओकओवर परिसर में पौधा लगाकर सप्ताह भर चलने वाले पौधारोपण सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम शिमला के पार्षदों को बान और देवदार के पौधे भी वितरित किए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री भी विभिन्न पौधारोपण कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जन भागीदारी को बढ़ावा देंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया और पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जनहित में खोले गए करीब 2000 संस्थानों को सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है। आज शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सरकार ने झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता हासिल की और लोग आज उन गारंटियों के पूरा होने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के बड़े बड़े दावे और 83 लाख रुपए की नई मशीनें लगाने के बावजूद गरीब मरीजों को निजी क्लिनिकों में हजारों कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने भाजपा में गुटबाजी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है, संगठन भी भूमिकाएं तय करता है जबकि कांग्रेस के अनगिनत गुट है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि करोड़ों का कर्ज लेने के बावजूद सुक्खू सरकार चुनाव के समय लोगों को दी गई गारंटियां भी पूरी नहीं कर पाई। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों की बजाय एक सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्ष 1971 से 2022 तक विभिन्न सरकारों ने कुल 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जबकि वर्तमान सरकार ने 4,600 करोड़ सरकार की नीतियों और वादा खिलाफी से प्रदेश का
3: लोगों की चुनी हुई सरकार ना चल के बल्कि एक मित्रों की सिंडिकेट सरकार के रूप में काम कर रही है और इसने जगह जगह भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियां खोल के रखी हैं। आज प्रदेश की जनता इस बात को पूछ रही है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 4.25 साल में जो 44,600 करोड़ रुपया कर्जा लिया, अगर इनकी नीयत साफ होती तो प्रदेश में सरकार बनाने से पहले जो उन्होंने गारंटियां दी थी वो गारंटियां पूरी होती, क्योंकि बहुत भरकम रकम जो है 44,600 करोड़ रुपए जो कर्जा लिया है उसे गारंटियां पूरी करते। आज प्रदेश की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब उनको 1500 मिलेगा, नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको नौकरी मिलेगी। और इसके अलावा जो 300 यूनिट बिजली की गारंटी इन्होंने दी थी कि फ्री देंगे, उल्टा इन्होंने बिजली के बिल जो है 2 से 2.5 गुना बढ़ा दिए, इसलिए आज प्रदेश की जनता त्रस्त है।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सटेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 305 के तहत सैंज लूहरी बंजार ओट मार्ग पर बंजार से ओट तक सड़क के सुधार और टायरिंग के लिए 25,11,00,000 रुपये की राशि जारी करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जलोड़ी सुरंग परियोजना के लिए 1,775 करोड़ रुपए की स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह भी किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को स्वीकृति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 303 पर नगरोटा बगवां रानीताल सड़क के लिए 395 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान कर दी है। नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश को सड़क अवसंरचना के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि जन शिकायतों का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे आज बिलासपुर में आयोजित जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। धर्माणी ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने जिले से जुड़े जनहित के कई मुद्दे उठाए, जिन पर राजेश धर्माणी ने संबंधित विभागों को आवश्यक व समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर जिला की जटेहड़ी पंचायत के पतेहड़ी गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने गांव को सड़क से जोड़ने संबंधी संभावना का जायजा लिया और सड़क में आने वाली वन विभाग की भूमि को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सुनील शर्मा बिट्टू ने गांव के लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखने का भरोसा दिया। केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति की बैठक आज आकाशवाणी शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं को लेकर किए गए कार्यों की चर्चा की गई। दूरदर्शन समाचार शिमला की प्रमुख नंदनी मित्तल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सूचना व प्रसारण मंत्रालय और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न इकाइयों के बीच अंतर मीडिया संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। पीआईबी की सहायक निदेशक संजीव शर्मा ने जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के मीडिया संगठनों और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक उपयोग करने पर जोर दिया। बैठक में आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा और सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर सहित 50 से अधिक विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि 11 जुलाई से शुरू हुए आंदोलन में प्राथमिक शिक्षकों सहित कई शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था का विरोध किया और इसे न्यू जुगाड़ तंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 5 सितंबर तक सरकार ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।
4: प्राथमिक शिक्षक संघ का 11 जुलाई से आंदोलन पदयात्रा के रूप में चला। 25 जुलाई को शिमला में पदयात्रा पहुंची थी और 25 जुलाई को ही हिमाचल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में 25 जुलाई को बैठक हुई थी। उसी बैठक के अंदर यह निर्णय हुआ था कि एक कमेटी जो है गठित की जाएगी। जो हमारा पूर्व का आरोप रहा है कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं, यह एक न्यू जुगाड़ तंत्र है, वह कल की बैठक में सिद्ध हुआ। सब संगठनों ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को न्यू जुगाड़ तंत्र का नाम दिया। हमें 5 सितंबर तक का समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया है। अगर 5 सितंबर तक इस विषय में सही निर्णय नहीं लिया जाता है तो आंदोलन के और स्वरूप भी आपको देखने को मिलेंगे।
1: प्रदेश के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम वर्षा जबकि 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। वर्षा के कारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से कई सड़क मार्ग बाधित हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में करीब 48 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा का आरोप, करोड़ों का कर्ज लेने के बावजूद चुनावी गारंटियां पूरी नहीं कर पाई सुक्खू सरकार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की भेंट। हिमाचल से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से की चर्चा। और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति ने सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर दिया बल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं, तो अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर।
7: इसको खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रहा है ये? हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
6: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
7: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।
1: आते रहे दिल

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
6: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।

0: ये देख डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
1: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
0: और तू चिंता मत कर।